सुप्रभात। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 21, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 और 22 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का यह प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होगा बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए सामान्य नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यू और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 और 20 सेकेंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।

घड़ी से ज्यादा बीत चुकी थी। चारों ओर अखंड शांति थी। सिर्फ पहरेदारों और घड़ी घंटालों की आवाज बीच बीच में सुनाई पड़ती थी। पहरेदार जागते रहो की अलख जगा रहे थे तो घड़ी घंटाल समय की सूचना दे रहे थे। अबू बेन अदम गहरी नींद में बेसुध पड़ा था कि वह एक स्वप्न देखने लगा, मानो पूर्ण जागृत हो गया हो चैतन्य। वह देख रहा था एक दिव्य पुरुष को। अखंड तेज टपक रहा था उसके पूरे व्यक्तित्व से। एक प्रभा मंडल भी फैला था उसके चारों ओर। स्वर्ण का वस्त्र, स्वर्णाभूषण और हाथ में सोने की दवात और कलम। वह किसी स्वर्ण पत्र पर कुछ लिख रहा था। अबू बेन अदम की हालत देखने योग्य थी। पहले तो वह उसे अपलक देखता रहा, मूर्तिमत जड़ हो गया, पर उसकी अंतर चेतना कार्य कर रही थी, एक उत्सुकता जन्म ले रही थी। आखिर वह कौन है, यहां क्यों आया है और क्या लिख रहा है? उससे रहा नहीं गया, वह साहस जुटाकर बोल ही पड़ा, क्योंकि इस स्वर्ण अवसर को वह गंवाना नहीं चाहता था। वह उनकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, कौन है आप, यहां क्यों आए हैं और क्या लिख रहे हैं? दिव्य पुरुष ने एक बार अबू बेन अदम को निहारा, फिर हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा कुछ था जिससे आश्वस्ति झरती थी, मानो वह कह रही हो, जो पूछना हो निर्भय होकर पूछो। उसने मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते हुए कहा, मैं हूं देवताओं द्वारा भेजा गया देवदूत। मुझे ईश्वर ने एक विशेष कार्य से भेजा है। उन्होंने आदेश दिया है कि मैं ईश्वर की सेवा करने वालों की एक सूची तैयार करूं, वह जान पाए अपने सेवकों और भक्तों को। अबू बेन अदम का मस्तिष्क बड़ी तेजी से कार्य कर रहा था। वह क्षिप्रता से अपने अतीत के गली गलियारों में चक्कर लगाया और पाया कि उसने कभी ईश्वर की कोई सेवा ही नहीं की। उसे बड़ा दुख हुआ कि आज उसका नाम इस सूची में ना आ पाया। हां, मस्तिष्क पर जोर डालने से उसे स्मरण हो गया कि वह ईश्वर के बनाए मनुष्य की सेवा करता रहा है। सेवा का कोई अवसर आ जाए तो वह नहीं चूकता था। उसके मुखमंडल पर यह सोचकर प्रसन्नता की एक हल्की सी किरण दौड़ गई। फिर वह उदासी से घिर गया कि मनुष्य की सेवा करने वालों की यहां सूची कहां बन रही है। उसने हिम्मत न हारी और देवदूत से कह ही दिया, भगवान, मैं ईश्वर की सेवा करने वालों में नहीं हूं, परंतु भरसक ईश्वर की सृष्टि मनुष्य की सेवा किया करता हूं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा नाम उस सूची के अंत में लिख दें और स्पष्ट संकेत कर दें कि मैं मनुष्य का सेवक हूं। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और अंतर ध्यान हो गया। प्रातःकाल जगने पर अबू बेन अदम उसी घटना पर विचार करता रहा। उसे कभी अपने स्वप्न पर विश्वास न हो, कभी अपने प्रस्ताव पर, परंतु स्वप्न ऐसा स्पष्ट था कि जागृत अवस्था को भी मात कर दे। रात आई और वह गत रात के बारे में सोचते सोचते सो गया। ठीक उसी समय पुनः स्वप्न विधान हुआ। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं उसी देवदूत को देखकर। वही दिव्य रूप, स्वर्णपट, स्वर्ण मसीपात्र, लेखनी, वही कागज पर अबू बेन ने देखा कि उस कागज के शीर्ष पर उसका नाम चमक रहा था। देवदूत ने उसे शाबाशी दी और कहा, ईश्वर अपने बंदों को प्यार करने वालों पर कृपालु रहते हैं। खुदा से अधिक उन्हें खुदा के बंदे से प्यार करने वाले प्रिय हैं। इस विषय पर अपने चिंतन के कुछ क्षण दें।

श्रोता सुन रहे थे आज का चिंतन आकाशवाणी का। ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

महेंद्र कपूर, साधना सरगम और आयशा भोसले एवं साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे यह भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

0: श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर के गाए इसी भक्ति रचना के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की खड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अगला कार्यक्रम सुनते हैं, श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: टू एट

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: आज हम अपने कार्यक्रम में
1: श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आपसे थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 7 बजे आप सुन सकेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम घर संसार और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम फुलवारी। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर होगा प्रादेशिक समाचार रिले होगा हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर सुनिए कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सुन सकते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10 बजे सुनिए कार्यक्रम हेलो हजारीबा। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल और 5:30 पर होगा कार्यक्रम युवा तरंग। 6 बजे सुनिए कार्यक्रम मेहनत कस फिल्म संगीत, यह कार्यक्रम प्रसारित होगा संध्या 6:30 पर। 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से।

7:15 पर सुनिए कार्यक्रम झनकार और 7:30 पर होगा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स, 8 बजे होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और 8:45 पर समाचार संध्या रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे न्यूज 8:09 रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से और 9:15 पर स्पॉटलाइट ये कार्यक्रम भी रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे सुनिए कार्यक्रम आपकी चाहत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम शाम गजल। 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी समाचारों के साथ 11:10 पर होगा हमारे आज के इस प्रसारण का समापन। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। 6:55 पर संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। करिए कुछ पलों की प्रतीक्षा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिष् क्षेत्रेष् पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का यह जारी भाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। शुभारंभ कर रहे हैं इस खोटा लोकगीत के साथ।

सुहावन लगे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। संदेश से पूर्व मंटू कुमार दांगी के स्वर में आप सुन रहे थे खोटा लोकगीत, और अब शिवनंदन कुमार गरीब का गाया ये खोटा लोकगीत।

श्रोताओं, शारदा सिन्हा के गाए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम घर संसार, और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता। विषय है फीटल मेडिसिन। भेंटवार्ताकार हैं सौम्या श्रीवास्तव, इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी ओर से ममता कुमारी प्रसाद। आइए सुनते हैं।

उसे समझ में नहीं आता है, तो आप वैसी माओं को क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये फीटल मेडिसिन है क्या?

0: ये फीटल मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अजन्मे बच्चे की बीमारियों की जांच की जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था में 9 महीने जांच कराने के बावजूद जन्म पे बच्चों में कुछ खराबियां पाई जाती हैं, जो कि बनावटी खराबियां हो सकती हैं, या फिर आगे जाके जब बच्चा 6 महीना या 1 साल का होता है तो हमें पता चलता है कि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया, जो कि जेनेटिक खराबियों के कारण हो सकता है या फिर जन्म के समय खून संचालन कम होने के कारण। कभी कभी बच्चों में खून की कमियां, जिसे हमें हेमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं, जैसे थैलेसीमिया नामक बीमारी, सिकल सेल की बीमारी, इसकी जानकारी भी आगे जाके जब बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है तब पता चलता है। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसमें माँ बाप को भी और बच्चे को दोनों को ही काफी ही मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। फाइनेंशियल या फिर रुपए के मैटर में भी इसमें काफी खर्चे होते हैं इसके इलाज में। तो अगर हमें ये सारी बीमारियों की जानकारी बच्चे के पेट में रहते हुए पता चल पाए और माँ बाप को ये समझाया जा सके कि ये बीमारियां इलाज लायक हैं या ला इलाज हैं, तो उन्हें एक डिसीजन लेने में कि आगे इस प्रेगनेंसी को बढ़ाना है या फिर अगर उनकी स्थिति नहीं है या फिर वो बच्चा आगे जाके इस लायक नहीं होगा कि अपना जीवन सही तरह से गुजार सके, तो अगर उन्हें उसे हटाना है ये डिसीजन वो फिर इस बीमारी के हिसाब से ले सकते हैं। यही एक फीटल मेडिसिन ब्रांच का मेन एम होता है।
1: जी, तो डॉक्टर सौम्या अभी आप बता रही हैं कि इसके अंदर आप ये बातें बताती हैं कि आप महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किस तरह का होगा, तो ये कितनी जल्दी पता लग सकता है?
0: एक जो हम कहते हैं जब बच्चा पेट में 3 महीने का होता है उस समय कुछ ऐसी ऐसी जांचें होती हैं जो हमें करवानी चाहिए जिससे हमें बच्चे की जेनेटिक खराबी या मेजर कोई उसमें बनावटी खराबी है तो पता चलता है। जब 3रा महीना चल रहा होता है महिला का तो एक अल्ट्रासाउंड, जिसे हम NTNB स्कैन बोलते हैं, उसमें बच्चे के सर के पीछे के पानी को नापा जाता है और उसके हिसाब से बताया जाता है कि इसमें आगे कोई दिल की खराबी होने के खतरे हों या जेनेटिक खराबी जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं वो होने का खतरा है, ये है कि नहीं। और बाकी भी कोई अगर बच्चे में मेजर खराबी हो, जैसे सर ना बना हो बच्चे का या फिर पेट की अतरियां बाहर हो, ये सब भी हमें 3 महीने पे पता चल जाता है। तो एक अल्ट्रासाउंड जो साढ़े तीन महीने पे कराया जाता है वो महिला को अवश्य कराना चाहिए। दूसरी चीज एक 5वें महीने पे अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, जिसमें बच्चे की पूरी बनावट को बहुत गौर तरीके से देखा जाता है और इसके मुताबिक बताया जाता है कि बच्चा सही है या उसमें कोई खराबी है। ये अल्ट्रासाउंड भी काफी आवश्यक होता है क्योंकि 5 साढ़े 5 महीने तक अगर बच्चे में कोई मेजर खराबी है तो आप उसे आसानी से गिरा सकते हैं। उसके बाद जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है तो बच्चा गिराना भी संभव नहीं होता, मुश्किल भी होता है, और फिर वैसे बच्चे अक्सर जिंदा जन्म लेते हैं तो माँ बाप के लिए भी काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी मेजर बीमारियां हैं उसे हम 5 महीने की उस तक पता कर सकें। इसमें जो माँ बाप ऐसे हैं जिनके परिवारों में पहले से कोई जेनेटिक खराबी है, जिन्हें इसकी नॉलेज है, जैसे कि पहला बच्चा उन्हें पता है कि कोई थैलेसीमिया या और कोई बीमारी से ग्रसित है, या फिर पहले बच्चे में और कोई खराबी थी जैसे कोई हार्ट की खराबी थी जिसके कारण बच्चा 1-2 साल रह के खत्म हो गया, जिन्हें ऐसी चीजें पता है वो इससे पहले भी एक बार अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर ये बताएं कि हमारे पास पहले ऐसे हुआ है या हमारे परिवार में ऐसी बीमारी है, हमारा पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम का है। तो ये सब बीमारियों का हमें डेफिनेट 100% डायग्नोसिस करने का अब आ गया है ऐसी सुविधाएं कि हम कर सकते हैं, जिसे हम जांच बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस और एक कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये दो ऐसी जांचें हैं जिसमें हम बच्चे के चारों ओर के पानी या फिर उसके फूल में से निकाला हुआ टुकड़ा को जांच करते हैं, जिससे बच्चे की DNA की जांच होती है और इससे हमें पूर्ण रूप 100% पता चल जाता है कि बच्चे में ये बीमारी है या नहीं है। ये जांचें भी आपके 4थे महीने तक, 3रे और 4थे महीने में हो जाती हैं। तो 5वें महीने तक माँ बाप को ये पता चल जाता है कि हमारा बच्चा इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो वो निश्चिंतता से अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: डॉक्टर सौम्या, आप बता रही हैं कि 3रे महीने में जांच होती है, 5वें महीने में जांच होती है, तो ये जांचें तो काफी महंगी होती होंगी, और हमारे यहाँ जहाँ तक बात है कि एक आम महिला है वो ये जांचें, महंगी जांचें करने से बचती हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या सलाह देंगी?
0: देखिए, 3रे महीने और 5वें महीने की सारी जांचें महंगी नहीं होती हैं। अगर हम

0: तीसरे महीने का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो कि हर महिला अपनी प्रेगनेंसी में हर स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला को बताती है कि एक ना एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जी। तो इसी अल्ट्रासाउंड को अगर हम कोशिश करें कि तीसरे महीने में और फिर एक पांचवें महीने में करवा लें, तो हमें जरूरी नहीं है कि आगे फिर कोई अल्ट्रासाउंड कराना पड़े। अगर हमें पूर्ण रूप से पता है कि बच्चा सही है, तो फिर उसे ऊपरी पेट द्वारा जांच करके भी उसको बताया 9वें महीने तक देखा जा सकता है। तो ये दो एक चीजें हैं, और जिनके पास बहुत ही बंधिया है कि जो बिल्कुल ही पैसे से नहीं कर सकते खर्चा, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि पांचवें महीने में जरूर वो एक बार अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें, और एक बार वो अल्ट्रासाउंड और एक बार जो कुछ बेसिक खून की जांचें हैं वो जरूर करवा लें। अगर उन्हें उस समय पता चल जाता है कि सब सही है, फिर भी वो दो दो महीने पे फॉलो अप कर सकते हैं
1: जी।
0: और यहाँ झारखंड की महिलाओं में, स्पेशली यहाँ की जो आदिवासी जनसंख्या है, उसमें काफी थैलेसीमिया और सिकल सेल की बीमारी प्रचलित है। ये बीमारियां कई बार ऐसे होता है कि हमें पता नहीं चलती, बच्चा जन्मने के बाद एक दो साल की उम्र में पता चलती हैं, तो इससे माँ बाप को काफी परेशानी होती है। इसकी जांचें अब सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, तो गर्भावस्था में ये जांचें अब हर सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ के हजारीबाग के सदर में भी अब होती हैं ये जांचें, जो कि काफी कम पैसों में बाहर की तुलना हो जाती हैं। तो इससे हम हर गर्भवती महिला को, जिस तरह हम एचआईवी के लिए जांच करते हैं, बाकी बीमारियों के लिए करते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप करते हैं, तो उसी तरह ये खून की जांच है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि महिला इसका कैरियर तो नहीं है, इसका जो माइनर होता है इस बीमारी का वो तो नहीं है। अगर उस महिला में ये माइनर फॉर्म निकलता है या निकलता है कि वो एक कैरियर है इस बीमारी की, तो उसके पति की जांच अवश्य होनी चाहिए। और उसका पति भी अगर निकलता है कि ये उसमें भी ये इसका छोटा क्षण है, कैरियर है वो भी, तो उनके बच्चे में 25% खतरा होता है कि वो मेजर वाली बीमारी हो जाए, जिससे वो बाहर निकल के बिना खून चढ़ाए जिंदा नहीं रह सकता वो बच्चा। तो ये जब हमें पता चल जाए कि माँ बाप में ये चीज है, तो फिर हम उस बच्चे के पेट में जांच कर सकते हैं, जो कि कहने के लिए हाँ काफी महंगी पड़ेंगी, क्योंकि उसका करना महंगा नहीं होता है, पर जो अंदर से डीएनए निकलता है जो बच्चे का, उसकी जांच ही भारत में काफी कम जगहों पे होती है, और वहां भेज के जांच कराना ये महंगा पड़ता है। फिर भी ये सारे खर्चे 5-6 हजार रुपए के अंदर आ जाते हैं। तो जिसे आगे इस दिक्कतों से नहीं गुजरना है, उनके लिए ये ऑप्शन रहता है कि वो ये जांचें करवा लें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम घर संसार के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे, भेंटवार्ता विषय था फीटल मेडिसिन। इस संबंध में जानकारी दे रही थी डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव, इनसे बातचीत कर रही थी ममता कुमारी प्रसाद। तो इसी भेंटवार्ता के साथ अब आज का ये कार्यक्रम घर संसार समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मालवीय मार्ग हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं। संकलन एवं वाचन है वंदना अर्चना और अलका कुमारी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका
1: और मैं हूँ वंदना अर्चना।
0: बच्चों का अपना प्यारा कार्यक्रम फुलवाड़ी आकाशवाणी हजारीबाग से फिर से शुरू हो गया है,
1: जहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे ढेर सारे गीत, चुटकुले, पहेली और भी कई सारे मनोरंजन कार्यक्रम लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल वंदना, ये देखिए सारे बच्चे जो इस फुलवाड़ी इस क्यारी में हम लोग आए हुए हैं, वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और जो सुन रहे हैं तो उनको बता दे कि आज हम लोग किस विद्यालय आए हुए हैं।
1: हाँ अलका, जरूर बता दे उन बच्चों को।
0: तो आज हम आए हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मालवीय मार्ग, जहाँ के बच्चे आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे
1: और माहौल को बहुत ही खुशनुमा और मनोरंजन बनाएंगे। तो जय हिंद बच्चों।
0: वंदना, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरस्वती

0: वंदना से
1: पूछते हैं कि कौन कौन से बच्चे सुनाने वाले हैं? आप सरस्वती वंदना गाने वाले हैं?
2: जी।
1: आपका नाम क्या है?
2: शानवी त्रिपाठी फ्रॉम क्लास 7।
1: आपका?
3: रिद्धि सिन्हा।
1: और आप?
4: मेरा नाम साक्षी भारद्वाज है, मैं कक्षा 5 की छात्र।
1: और आप?
5: माय नेम इज आयुष कुमार सिंह एंड आई एम फ्रॉम क्लास 6।
1: और आप तबला पे संगत देंगे?
5: हाँ।
1: और आप?
6: मेरा नाम त्रिशा।
1: शुरू करते हैं।

0: आगे जानते हैं कि बच्चे हमें क्या सुना रहे हैं।
1: अब हम गणेश वंदना सुनाने जा रहे हैं।
2: आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम सोनाक्षी कुमारी है।
2: और आपका?
3: मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है, मैं दसम की छात्रा हूँ।
2: और कुछ सुनाने वाले इसमें?
4: आई एम श्रेया सिन्हा फ्रॉम क्लास 7।
2: और आपका?
5: मेरा नाम नंदनी कुमारी गुप्ता है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ।
2: तबला में है?
6: मेरा नाम अंश कुमार गुप्ता है।
2: अच्छा, तो सुनते हैं ये गणेश वंदना।

0: बहुत ही अच्छे।
1: तो अलका, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं बहुत देर से निहार रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी।
0: बिल्कुल, ये वंदना बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। इच्छा तो इनकी भी थी कि हम लोग भी शामिल हो जाए, लेकिन अब हम लोग देर ना करके इन लोगों का परिचय लेते और सुनते हैं कि ये बच्चे अपने साथ कौन कौन से मनोरंजन के लिए गीत लाए हैं, पहेली लाए हैं, चुटकुले या कविता क्या क्या लाए हैं। सुनाने के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? आप क्या सुनाने वाली हैं?
2: मैं झरना कविता सुनाने वाली हूँ।
0: झरना कविता, तो आपका नाम क्या है?
2: माई नेम इज अनन्या कुमारी। ऊंचा ऊंचा वह पर्वत है, पर्वत से ही झरना झरता है, झरझर झरना कुछ कहता है, कभी न सोता बस बहता है। जीवन वह विश्राम नहीं है, चलना चल चलते रहना, अथक पृथक बढ़ते रहना, सुबह शाम आराम नहीं है, कदम कदम पे चट्टाने हूँ। थैंक यू।
0: बहुत ही अच्छे।
1: आपका नाम क्या हुआ?
3: सूर्यांश।
4: सौर राज।
1: तो आप दोनों एक ही कविता सुनाओगे?
3: यस।
1: सुनाइए।
5: उसने सूरज चांद बनाया, उसने तारों को चमकाया, उसने रच दी घर की आरी, फल फूलों से रच दी क्याली, पंछी को तो गीत सिखाया, सरसी नदियों को सरसाया,
6: उसने पंख सजाए,
5: उसने मानो जन्म दिया है, जीवन का वरदान दिया है, उस ईश्वर को सदा मनाया, उसे इसने शीश झुका।
0: वंदना, ये तीन प्यारी प्यारी बच्चियां आई हुई हैं कविताएं सुनाने के लिए।
1: हाँ? तो कविता सुनने से पहले इन लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है?
7: श्रेया गुप्ता।
1: श्रेया गुप्ता, किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
7: वन।
1: वन में। आप?
7: सोना।
1: और आप?
7: मंत्र कुमारी।
1: तीनों दोस्त हैं?
7: हाँ।
1: और आपको तीनों क्या सुनाएंगी?
7: कविता।
1: तो शुरू कीजिए।
5: उसने सूरज चांद

0: दान लिया, उस ईश्वर को सदा मना, इस स्नेह से शिशिर।
1: बहुत ही अच्छे। तो अलका, ये जो बच्चे आए हैं ये सभी कविताएं सुनाएंगे, तो पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम?
2: मेरा नाम है माहिर कुमार।
1: आपका?
2: सौरराज।
3: सूर्यांशी कुमार।
4: कार्तिक फौरिया।
1: चलिए सुनाइए।
5: टुन्नू बोला, क्यों रे पूसी फिर की तूने चोरी, दुद्दू सबका सब पी गई, नहीं दया की थोड़ी,
6: जैसे भूख लगी है बोलो मैं क्या खाओ, माँ पिताजी गए हैं बाहर, दूध कहाँ से पाओ, अगर जोर

0: अलका, अब बच्चे हमें एक देशभक्ति गीत सुना रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले उन सभी का नाम जानते हैं। आपका नाम?
1: मेरा नाम आरुषि भारती, मैं कक्षा पंचम की छात्रा हूँ।
2: आई एम शुभलक्ष्मी फ्रॉम 7।
3: आई एम श्रेया सिन्हा फ्रॉम क्लास 7।
4: आई एम सोनाक्षी कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10।
5: मेरा नाम मीनाक्षी पांडे।
0: और तबले पे संगत दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ?
6: मेरा नाम मोहित कुमार है।
0: और हारमोनियम पर इनके साथ है इनकी म्यूजिक टीचर। तो शुरुआत करते हैं।

0: तो बच्चों बारिश का मौसम आ गया है।
1: बारिश का मौसम आ गया है तो बारिश में भीगते हो कोई भी?
0: ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बच्चे बारिश में ना भीगे।
1: कौन कौन भीगते हो? अच्छा, इतने सारे बच्चे भीगते हो।
0: पर इस मौसम में हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है।
1: जब भी निकलो स्कूल आने के लिए, घर जाने के लिए या अदरवाइज कहीं भी जा रहे हो तो तुम लोग छतरी रखते हो अपने साथ?
0: और साथ ही साथ इस मौसम में ना खान पान का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: जो घर से बना हुआ मिले उसको ही खाना है।
0: पानी हमें खास कर फिल्टर किया हुआ या उबाल कर पानी पीना चाहिए।
1: समझ में आया आप सभी को? ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। अभी जो बारिश के मौसम में हम लोग पेड़ लगा सकते हैं।
0: पेड़ लगाने के क्या क्या फायदे हैं? वो हमें ऑक्सीजन देता है, उसकी लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फल इस्तेमाल करते हैं, बीज इस्तेमाल करते हैं, कई और भी सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है।
1: ये आप लोग वादा करते हैं कि आप सभी पेड़ लगाएंगे? वंदना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ। और देखते हैं ये बच्ची क्या सुनाने वाली है। आप क्या सुनाने वाली है?
2: मैं पर्यावरण पे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पेड़ लगाओ धरती माँ का मान बढ़ाओ, शुद्ध हवा और मीठी छाया, जीवन का यह सुंदर साया।
1: बिल्कुल, यानी पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ पर ये बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने बोला। तो सभी ताली बजाएं। एक छोटा सा बच्चा एक शायरी सुनाने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है?
3: अंश सिन्हा।
1: अंश सिन्हा, कौन सी शायरी सुनाने वाले हो?
3: तेरे चेहरे में दुखी आंखों में नमी है, तेरे चेहरे में दुखी आंखों में नमी है, टाटा नमक इस्तेमाल करो क्योंकि तुम में आयोडीन की कमी है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। सब कोई ताली बजाओ।
0: अलका, अब हमारे बीच आए एक बच्चे जो चुटकुले सुनाएंगे। नाम क्या हुआ आपका?
4: सोनू सिंह। टीचर गोलू से, पांच में से पांच घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास पांच भटूरे हैं और मैं पांच भटूरे तुझसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले।
5: टीचर कहती है, एक से दस तक गिनती सुनाओ। पप्पू कहता है, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस। टीचर कहती है, छह कहाँ गया? पप्पू कहता है, जी वो तो मर गया। टीचर कहती है, मर गया? कैसे मर गया? पप्पू कहता है, जी मैडम आज सुबह न्यूज़ में बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू से छह की मौत हो गई।
1: अभी एक बच्चे आए हुए हमारे पास में जो एक शिक्षा प्रद कहानी लेकर आए हैं। तो आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम कार्तिक। एक शरारती लड़का रोज आम के पेड़ पर पत्थर मारता था ताकि आम गिर जाए। पेड़ कभी कुछ नहीं कहता था बल्कि हर बार उसे मीठे फल ही देता था। कई साल बाद वही लड़का उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है। उसे अपने बचपन की शरारत याद आई। वह पेड़ के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें हमेशा पत्थर मारे फिर भी तुमने मुझे मीठे फल ही दिए। पेड़ बोल सकता तो कहता, दूसरों का व्यवहार नहीं अपना स्वभाव मत बदलो। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने तय किया कि वह बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देगा। सीख, महान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से अपना अच्छा स्वभाव नहीं बदलता।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छे।
0: दीदी आपसे कुछ पहेलियां पूछेगी, उसका जवाब देने के लिए तैयार हो? आपका नाम क्या हुआ?
7: श्रेया सिन्हा।
0: तो चलिए आप पहली पूछेंगी।
7: ना आग ना पानी फिर भी सबको जला जाए, वो कौन सी चीज है?
0: वेरी गुड।
7: ना पैर ना पहिया फिर भी दौड़ लगाए, वो कौन सी चीज है?
8: नहीं, समय।
0: अब आप लोग क्या सुनाइएगा?
5: अब हम झारखंड का एक लोकगीत सुनाने जा रहे हैं।
0: तो अलका सुना जाए।

0: और उम्मीद करती हूँ अलका कि जो बच्चे रेडियो पे भी सुन रहे थे इस कार्यक्रम को, उन्हें भी जरूर पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कहने की बात है, बच्चे काफी पसंद किए होंगे। सारे बच्चे अपना कह लीजिए कि जो ज्ञान का पिटारा है या मनोरंजन का पिटारा है वो खोल कर रख दिए हैं।
0: हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि इन बच्चों से विदा लेने का वक्त हो गया है, तो फिर मुलाकात होगी।
2: जय हिंद।

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मालवीय मार्ग हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुन रहे थे श्रोता फुलवारी। संकलन और वाचन था वंदना अर्चना और अलका कुमारी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। इसके साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ज पर। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के आज का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से होगा और प्रादेशिक समाचार 8:45 पर रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

0: मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री

0: 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकुओक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डाब्रोवस्की और लुइसा स्टेफिनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
5: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
4: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
5: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
4: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists.

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने झारखंड के गढ़वा जिले से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 261 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से झारखंड और छत्तीसगढ़ रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि स्थानीय लोगों के कुछ मांगे हैं जिसे रेलवे मंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
1: प्रतिनिधि मंडल का कहना यह था कि बड़गढ़ बंडरिया होकर के रेल लाइन को गुजरना चाहिए। संबंध में मैंने उन्हें बताया कि जो पुराने रेल लाइन का अलाइनमेंट था उसमें गाड़ी का स्पीड 89 किलोमीटर ही रहेगा, जबकि ये रेल लाइन जो बन रही है उस पर गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर होगा। पुराने अलाइनमेंट पर रेल निकलना संभव नहीं है, इसलिए नया अलाइनमेंट स्पीड के दृष्टिकोण से दिया गया है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3,51,000 से अधिक नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार विभागों की रिक्तियां को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
2: हेमंत सोरेन जी की ही सरकार है जहां रिक्तियों को भरने की दिशा में बहुत तेज गति से कार्रवाई की जा रही है, और मैं अनुमान करता हूं कि इनके कार्यकाल में लगभग 40,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, इससे अधिक भी हो सकती है। सरकार की इच्छा है कि ये जो 5 वर्षों का कालखंड है यानी कि 2029 तक अधिक से अधिक राज्य के युवाओं को जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें अवसर दिया जाए ताकि वो सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा सके।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के हित में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए स्वीकृत पद सृजित कर उन्हें उन पदों पर समायोजित करें। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मियों को आउटसोर्सिंग में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन 30 जुलाई तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नई समिति में अभिभावकों की प्रमुख भूमिका होगी। समिति में 50% महिला सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे विद्यालयों के संचालन, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने का

0: लक्ष्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई डी 2025-26 में चतरा जिले ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए विशेष प्रयास श्रेणी 2 में 256वां रैंक प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह वरीयता सूची बच्चों में सीखने का अवसर, शिक्षा की पहुंच, आधारभूत सुविधा और संरचनाएं, समानता एवं प्रशासनिक दक्षता, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसे विषयों का आकलन का तैयार किया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @ और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को बीएलओ बीएलए 2 की संयुक्त बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं पर भी चर्चा होगी तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सभी पात्र नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की बीएलओ जमीला बीबी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान पैसे मांगने का आरोप था। जिले के उपायुक्त न देने पर नागरिकता रद्द करने की धमकी दी थी।
1: बीएलओ उन्होंने कुछ लोगों से पैसा मांगा है और पैसा लिया भी। उक्त के आलोक में मैंने तत्काल प्रभाव से उस बीएलओ को वहां से जो इनोग्रेशन फॉर्म और एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है उन्हें, और साथ ही जो मूल उनका काम था आंगनवाड़ी सेविका के रूप में वहां से भी चयन मुक्त करने का निर्देश मैंने डीडीसी को दे दिया है।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों को सोलर आधारित बिजली पैनल लगाने पर विभिन्न श्रेणियों में अनुदान दे रही है। साहिबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभू चौधरी ने बताया कि जिनके घर में बिजली की खपत ज्यादा है उनके लिए यह योजना लाभदायक है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं और सोलर लगाने के बाद उनका कंजम्पशन 200 यूनिट से कम जाता है तब तो 100% उनका बिल फ्री हो जाएगा। 100% फ्री नहीं भी होता है तो जितना यूनिट वो सोलर से जनरेट करेंगे वो एक तरह से मुफ्त होगा।
0: झारखंड में अगले सप्ताह मॉनसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश से वर्षा की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 के 9वें राउंड के ओपन मुकाबले में व्यांश ने अमांश को, सिद्धार्थ ने रियांश को, रयान ने तक्षांत को और निखिल ने जिनसन को हराया, जबकि जोहान और तमीज के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अर्पिता को, अंशिता ने अर्षिता को और पुनीता ने पविष्णा को पराजित किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मनरेगा कर्मियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बहरागोड़ा में करोड़ों का पन्ना जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने रांची के चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर की दुमका के मसानजोर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड ने

0: संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत की रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, मगर उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: गजब जी। श्रोताओ, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से अपने दोस्त अशोक के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, फिल्म का नाम है बचपन।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता मोहम्मद रफी साहब के गए बचपन फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ अब आज का मॉर्निंग मेलोडी का सफर यहीं पे खत्म होता है। अनुमति दीजिए शोक को। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। सुबह के 10 क्षमा करें सुबह के 9 बजने को हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ होप, यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आशा अंधकार में एक दीपक के समान हमारा जीवन पथ आलोकित करती है। आज चारों ओर तनाव है, भागदौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में आशा हमारा संबल बन जाती है। एक आशावान व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश का भी भला करता है।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए हैप्पी फिर भाग जाएगी फिल्म का ये गाना।
1: कित चलिए हंज गए के

दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, यानी रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 से मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर रेत और धूल भरी आंधियों के असर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस चुनौती से निपटने के लिए वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि आवश्यक हैं। इस वर्ष की थीम है स्रोत से प्रभाव तक, रेत एवं धूल भरी आंधियों से भूमि और जीवन की रक्षा। यहाँ दोस्तों तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देहाती डिस्को फिल्म का ये गाना

अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में देहाती डिस्को फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रणव वत्स और संगीतकार थे गणेश आचार्य। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में गीतकार हैं अमरीक सिंह और कुमार, और संगीतकार हैं जसलीन रॉयल। फिल्म का नाम बार बार देखो और उसका ये डांस नंबर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आई हूँ आज के फनकार।
1: तेरे प्यार का

दोस्तों, फिल्में बॉक्स ऑफिस से चाहती हैं प्यार का आसरा, लेकिन सभी फिल्मों के खाते में सफलता के सिक्के नहीं खनकते। आज जिस तरह से बॉक्स ऑफिस से फिल्में धराशायी हो रही हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो कौन विश्वास करेगा कि एक जमाने में उन्होंने सम्मोहित कर रखा था दर्शकों को, जो हैं हमारे आज के फनकार। बूझिए तो भला,

0: पंछी।
1: अब तो पहचान गए होंगे, हमारे आज के फनकार हैं जुबली कुमार यानी अभिनेता राजेंद्र कुमार। इतनी सुनहरी है राजेंद्र कुमार की दास्तां कि आपकी इस रेडियो सखी का एक मन तो ये हुआ कि बस एक लाइन से फिल्मों के नाम गिनाएं और सुनवाते जाएं उनकी फिल्मों के सुर।

दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी रेडियो सखी का मन तो ये हुआ कि फिल्मों के नाम बताएं और गीत बजाते जाए, पर भला ये सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार की दास्तां कहाँ रहती। तो फिर सुनिए, राजेंद्र कुमार तुली जन्मे तो 20 जुलाई 1929 को थे सियालकोट में, जो अब सरहद के उस पार है। फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद, जब परिवार आया मुंबई और जब राजेंद्र कुमार निर्देशक H.S. रवैल के सहायक बन गए। शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी।

0: तूफान की।
1: सचमुच राजेंद्र कुमार का करियर दिए और तूफान की लड़ाई की तरह थी। फिल्म जोगन से जो दिया जला उसे सितारा बनने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। सन 1957 में राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नजर आए।

0: दुख भरे दिन बीतरे भैया अब सुख आयो रे
1: रंग जीवन में नया लायो रे
0: होए होए दुख भरे दिन बीतरे भैया बीतरे भैया।
2: अपने जमाने के तमाम चर्चित अभिनेत्रियों के पीछे लहराते हुए गीत गाने का मौका मिला था इस अलबेले नायक राजेंद्र कुमार को। आइए हम भी भीगें प्यार की इन मस्त फुहारों में और चले उस फ्लैशबैक पर जहां हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अलग अलग तारिकाएं। फिल्म संगम, राजेंद्र कुमार और बैजंती माला।

0: दोस्तों बात चल रही है राजेंद्र कुमार की उस मोहब्बत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपनी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू, राजेंद्र कुमार और साधना।
1: वो नाजुक लबों से

0: सदाबहार गानों का जिक्र चल रहा है तो आपको ये बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सन 1963 और 1966 के बीच लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इसे कहते हैं किस्मत।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे।

0: मिलाकर अपनी फिल्मी यात्रा में राजेंद्र कुमार एक ऐसे आधार स्तंभ बन गए जिसे डिगाना आसान नहीं था। एक लंबे समय तक मेलोड्रामा यानी अति नाटकीयता, त्रासदी और आंसू बहाव फिल्मों का दौर जारी रहा, जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका रहा। बीच बीच में बाद के दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं। विडंबना देखिए कि सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया, उसका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार का बंगला भी खरीद लिया।
1: हुस्न वाले

0: हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
1: गीतकार और निर्देशक सावन कुमार की यादों में राजेंद्र कुमार आज भी बसे हैं। साजन बिना सुहागन फिल्म की एक घटना को याद करते हुए सावन कुमार कहते हैं,
2: एक दिन राजेंद्र कुमार जी का बर्थडे था और मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मुझे जानती थी, बोली भाई साहब आइए आप बैठिए मैं उनको खबर करती हूँ। तो उनको खबर किया तो वो कहने लगे सावन जी को यहीं भेज दो। तो पीछे मैं गया जहाँ वो बैठे हुए थे तो वहाँ राज कपूर साहब बैठे थे उनके साथ। तो मैंने देखा इतने बड़े आदमी का बर्थडे है, कोई है नहीं, और चंद बुके पड़े थे फ्लावर्स के भी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने अपना बुके दिया और उनको विश किया कि भैया हैप्पी बर्थडे आपको, तो मैं आपके लिए उन्होंने कहा एक और गिफ्ट लाया हूँ और वो है कि एक पिक्चर आप मेरी कर रहे हैं। जबकि वो चार साल से घर बैठे थे, कोई फिल्म नहीं थी उनके पास, जुबली स्टार थे। तो सबसे पहले राज कपूर साहब खड़े और उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि भाई तुमने आज मेरे दोस्त को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है जो मैं नहीं दे सका, मेरी हिम्मत नहीं है इस वक्त इनके साथ फिल्म बनाने की, अगर तुम बना रहे हो तो मेरी दुआ है तुम्हारी फिल्म गोल्डन जुबली होगी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि राज साहब आप मेरी पिक्चर का क्लैप दीजिए। उन्होंने कहा कि क्लैप नहीं दूंगा मैं, सिल्वर जुबली की ट्रॉफी बांटने आऊंगा इस फिल्म की। और उनकी मुबारक जुबान जो है ना अल्लाह ने कबूल की और पिक्चर सुपर हिट हुई और वही ट्रॉफी बांट के गए मेरी इस फिल्म की।

0: पवन कुमार साहब, अभिनेता राजेंद्र कुमार को आप किस रूप में याद करना पसंद करते हैं, किस रूप में वो आपको याद आते हैं?
1: वो खाली एक अभिनेता ही नहीं थे, बड़े अच्छे इंसान थे और मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें बता बता के सारी चीजें, मैंने अपने आप को बड़ा एजुकेट किया इस तरह से। ऐसे कई बार राज साहब से बातें होती थी तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पर राजेंद्र कुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में बनाई और हमने वो 3 फिल्में इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए, ऐसा लगा नहीं को किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ या बहुत बड़े आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और हर वक्त वो एक फिलोसोफर, गाइड और फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहे मेरे।
0: साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली और ओ बेवफा, यही फिल्में थी ना? हम ये जानना चाहते हैं कि शूटिंग के दौरान या फिर जब वो डांस करते थे या डायलॉग डिलीवरी होती थी तो उस वक्त वो कैसे होते थे, मतलब बड़े संजीदा होते थे या हंसूड़?
1: बिल्कुल संजीदा इंसान नहीं थे वो, बिल्कुल हंसमुख और कॉमेडियन कैरेक्टर थे लाइफ के अंदर।
0: अच्छा।
1: हमेशा हंसते रहना और हंसी मजाक करते रहना, मैंने कभी उनको जिंदगी में सीरियस होते देखा ही नहीं।
0: संवाद अदायकी के वक्त,
1: हाँ, वो एक कैरेक्टर है ना जो प्ले करते हैं, फिर वो जिस तरह का कैरेक्टर था वो फिल्मों में काफी संजीदगी के रोल किए हैं उन्होंने, और साजन बिना सुहागन में भी उनका बड़ा संजीदा रोल था, तो वो तो एक एक्टर की क्वालिटी है ना, उसको किस तरह से परफॉर्म करता है वो। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और उनके साथ एक और बात थी खास की नूतन जी भी सुपरस्टार थी और वो भी सुपरस्टार थे, कभी दोनों ने साथ नहीं काम किया था। तो वो पहली फिल्म थी जब नूतन जी भी एक्चुअली रिटायर हो चुकी थी फिल्मों से, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये फिल्म कीजिए। तो जब वो सुपरस्टार थे दोनों ने साथ काम नहीं किया, जब वो स्टार नहीं रहे थे दोनों, फिर एक पिक्चर में साथ काम किया, फिर वो पिक्चर गोल्डन जुबली हुई।
0: पहले राजेंद्र कुमार एक सदाबहार नायक रहे, फिर चरित्र अभिनेता बने, फिर 80 के दशक में बने प्रोड्यूसर और अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म संसार में उतारा। फिल्म थी लव स्टोरी।

कुल मिलाकर भारतीय फिल्मों के अति भावुक ढांचे में से राजेंद्र कुमार के रूप में एक ऐसा नायक निकल कर आया था जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हमें हंसाया और रुलाया।

नायक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे जुड़े किसी दर्शन को याद किया जाए। और आपकी रेडियो सखी के लिए वो दर्शन ये है।

0: आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता राजेंद्र कुमार पर।
1: शोध और आलेख आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 10 बज चुके हैं, लीजिए पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे आज के इस अंक के साथ मैं अशोक सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बारिश का इंतजार अभी भी है, कुछ क्षेत्रों में हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है और मौसम में थोड़ी सी नमी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तो है भाई। और आने वाले चार दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है मौसम वैज्ञानिकों के माध्यम से, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दो चार दिनों के अंदर में अच्छी बारिश होगी ताकि अच्छे धान के पैदावार हमें इस बार भी देखने को मिले। चलिए

अब सबसे पहले आज के मौसम का हाल आपको बता दें कि आज का न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान अधिकतम रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। आज मौसम छाए रहेंगे, बारिश की संभावना बनी रहेगी, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। शहर के मुख्य आयोजनों की बात करें तो भगवद गीता पाठ का आयोजन हमेशा की तरह आज भी संध्या 6:30 से ये झील सेंटर में किया जाएगा और छठ तालाब स्थित सूर्य मंदिर में पूजा पाठ समय संध्या 7:30 पर। तो ये थी मौसम का मिजाज। अब कार्यक्रम का आगाज हो गया है तो एक खूबसूरत से गीत के साथ हम आपको सुनवाते हैं पहले, उसके बाद फिर कार्यक्रम में ढेर सारी सामग्रियां हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस आप हमारे साथ अगले एक घंटे तक बने रहिए और सुनते रहिए 102.1 MHz आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र।

कार्यक्रम हेलो हजारी भाग में एक बार फिर से मैं शो का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे दो विषयों पर, क्योंकि आज जो है सो विश्व आशा दिवस भी है। जी हां, होप, आशा एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर कड़ी से कड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, और आशा यानी उम्मीद ही एक ऐसा दामन है जिसके रहते व्यक्ति अगर ये खत्म हो जाए तो फिर मानवता ही खत्म हो जाएगी, आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है। तो विश्व आशा दिवस के अवसर पर कठिन परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने की प्रेरक शक्ति प्रदान करती है, और इन इस सब के अलावा रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है। तो दोनों विषयों पर हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष चर्चा करें। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्व आशा दिवस पर। तो ऐसा है दोस्तों कि कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति आशा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो टूटने के बजाय आगे बढ़ने का हौसला देती है। यह विज्ञान के अनुसार आशा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक सीधी सीखी जाने वाली और मापने योग्य मानसिक क्षमता है। यह कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करती है। यह हमें मानसिक आघातों, अवसाद और तनाव से उबरने की शक्ति प्रदान करती है, और कठिन समय में यह प्रकाश की एक किरण का काम करती है जो हमें समस्याओं के बजाय उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। आशा जीवन में नकारात्मक विचारों, हिंसा और हताशा से बचाने के लिए एक ढाल का भी काम करती है। जी हाँ, तो विश्व आशा दिवस पर हम यही कामना करते हैं कि आप किसी भी कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आप उससे निपटने की अपने आप में हौसला को बुलंद रखेंगे, उम्मीद की किरण को जागृत रखेंगे, तभी जो है सो आप उस समस्या से निदान पार पाएंगे। एक और चर्चा के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले गीत संगीत।

खूबसूरत से युगल गीत के बाद कार्यक्रम हेलो चारीबाग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के सुविचार पर हम चर्चा कर लें। विश्वासा दिवस के अवसर पर ही जेन गुडॉल का ये कथन है, उम्मीद मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। जी हाँ, उम्मीद मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। जैसा कि अभी हमने कहा कि उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अब चलिए एक और विषय पर हम चर्चा करते हैं। 12 जुलाई को रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को नामित किया था ताकि वैश्विक स्तर पर इन आंधियों के स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिवस और प्राकृतिक आपदा से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 150 से अधिक देशों को प्रभावित करने वाले इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए यूएन द्वारा 2025 से 2034 तक के दशक को एक समर्पित कार्य दशक के रूप में घोषित किया गया है। इन आंधियों से वायु गुणवत्ता खराब होती है, कृषि उत्पादकता घटती है, परिवहन बाधित होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 33 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। तो आज के इस दिवस के अवसर पर आप भी सचेत हो जाइए और प्रकृति पर तो जोर किसी का है नहीं, लेकिन आप उससे निपटने के कुछ आवश्यक संसाधन अवश्य ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ स्थानीय खबरों की ओर रुख करते हैं। ये हजारीबाग दैनिक भास्कर में हजारीबाग भास्कर का पन्ना इस वक्त हमारे पास है, जिसमें कुछ प्रमुख खबरें हजारीबाग जिले की हम आपके साथ शेयर करने चाहेंगे। बरकट्ठा तितरौन मार्ग अक्टूबर तक बनेगा, 40 गांव हो गए लाभान्वित। और खबर है विष्णुगढ़ में हाथियों का एक बार फिर से उत्पाद देखा बढ़ गई है और वन विभाग की टीम ने गांव से खदेड़ा हाथियों को। हाथियों के झुंड ने ग्रामीण को कुचलकर मार डाला और मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देने की बात कही गई है।

और कुछ खबर के और हम रुक करते हैं हेडलाइंस पढ़कर आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर के पर्यावरण संरक्षण अभियान एक पेड़ एक जिंदगी के तहत पालिका उच्च विद्यालय में किया पौधरोपण, और भारतीय रंगमंच और लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है, ये कहा है राम किशोर ने। ये हजारीबाग के कला के माध्यम से व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक चेतना जगाने वाली संस्था तरंग ग्रुप हजारीबाग द्वारा आयोजित निःशुल्क 5 दिवसीय नाटक एवं नृत्य कार्यशाला का भव्य शुभारंभ किया। कार्यशाला में लगभग 50 प्रतिभागी अभिनय नृत्य और मंचीय कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में समाज संस्कृति एवं कला जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थित रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी बटेश्वर प्रसाद मेहता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज के सकारात्मक दिशा देने और युवाओं के व्यक्तित्व को निखारने का सशक्त साधन है। और हरी

याली दूत दिनेश आज करेंगे 1001 फलदार पौधों का वितरण और रोपण। ये चौबारण की खबर है। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से चौपारण प्रखंड के बच्छई पंचायत के अंतर्गत डुमरी निवासी तथा स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के निदेशक हरियाली दूत दिनेश के सौजन्य से रविवार को 1001 फलदार एवं छायादार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक नन्हा सा दिल अभियान शुरू। जन्मजात हृदय रोग के बच्चों को मिलेगा नया जीवन। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 521 बच्चों की हृदयघात जांच की गई जिसमें 7 संदिग्ध मिले। ये बरही से जुड़ी हुई खबर थी। एक और खबर के मुताबिक सिलवार जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा की तैयारियां तेजी पर। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भ्रमण पर निकलेंगे महाप्रभु। कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे लेकिन यहां पर कभी देर से आपको हमने कोई गीत नहीं सुनवाया। आई सुनते खूबसूरत संगीत।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग भी मैं शो का आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम का आधा सफर आप तय कर चुके हैं और आधे सफर के लिए अभी भी आप तैयार रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब कुछ प्रमुख खबरों की ओर रुख करते हैं जो अखबार की सुर्खियों में बनी हुई है। भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया राजनीतिक महत्व का दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम लक्सन की बैठक में 10 समझौते किए गए, जिनमें कुछ प्रमुख बातें। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड के साथ भी समुद्री सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की गई है। द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक दोगुना कर 35,000 करोड़ का किया जाएगा। और प्रमुख समझौते, समुद्री सहयोग एवं पर समझौता हुआ है। पारस्परिक रसद सहायता पर भी समझौता हुआ है। आतंकवाद विरोधी कार्य समूह पर समझौता हुआ है। और ये प्रमुख घोषणाएं, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक दर्जा देना और वर्ष 2030 तक के लिए राजनीतिक रोडमैप। एफटीए के संदर्भ में वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करना। समुद्री सुरक्षा समन्वय तथा सूचना आदान प्रदान को मजबूत करना, ये प्रमुख बातें हुई है। और एक खबर के मुताबिक तीसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय वायुसेना, चीन भी छूटा पीछे। विश्व में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस की वायुसेना। दर्शक वायु सेनाओं की सूची तैयार की गई है, जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, रूस दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर चीन, पांचवें नंबर पर जापान, छह नंबर पर इसराइल, सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें नंबर पर ब्रिटेन, अक्रमशः दक्षिण कोरिया और इटली नौवें और दसवें स्थान पर है। तो यह भारत देश के लिए गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाली भारतीय वायुसेना ने वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 रैंकिंग में लगातार तीसरा स्थान बनाए हुए है। और एथलेटिक्स में भारत की ऊंची उड़ान, सर्वेश व अनिमेश कुजूर ने रचा इतिहास। भारतीय एथलेटिक्स लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक और ऊंची कूद में सर्वेश इशारे ने

डायमंड लीग जैसे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया। वहीं दूसरी ओर फर्राटा धावक अनिमेश कुजूर ने विदेशी धरती पर 100 मीटर में किसी भारतीय का सबसे तेज समय निकालकर देश का मान बढ़ाया है।

स्थानीय खबरों में पीटीसी चौक से कुर्रा तक हटाया जाएगा अतिक्रमण। कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे मगर एक गीत के बाद।

तो चलिए श्रोताओं, अब कदम रखते हैं इतिहास के पन्नों की ओर की जानकारी को रुख करते हैं, जहां इंतजार कर रही है आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। संक्षिप्त सी खबरें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है आज की घटनाओं में। तो आज के दिन यानी कि 12 जुलाई को प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में जिक्र है 1799 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और बाद में वहां के शासक बने। 1949 का जिक्र है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर लगाया गया पहला प्रतिबंध 16 महीने के बाद हटा दिया गया था। 1970 में अलकनंदा नदी जो कि उत्तराखंड में है आई भीषण बाढ़ में लगभग 600 लोगों की जान चली गई थी। और 1998 में आज के दिन फ्रांस ने ब्राजील को हराकर 16वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट जीत लिया था। और अब 12 जुलाई को जन्मे व्यक्तियों की सूची भी आपको हम बता दें। 1984 में जूलिया गिलार्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। और 1997 में मलाला यूसुफ जई जो कि पाकिस्तान की बाल अधिकारी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। निधन की सूचियों में दो नामों का जिक्र है। 1536 में एरास्मस डच जो कि दार्शनिक और ईसाई मानवतावादी थे, और 2004 में बिड़ला परिवार के प्रमुख उद्योगपति बसंत कुमार बिड़ला के सुपुत्र का भी जिक्र है। तो श्रोताओं, ये थी इतिहास के पन्नों की जानकारी। एक और महत्वपूर्ण बात फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई, आज के दिन निधन हुआ था भारतीय सिनेमा के जुबली स्टार। जी हां श्रोताओं, जुबली स्टार आप सब समझ ही गए होंगे। जी हां, राजेंद्र कुमार भारतीय सिनेमा में 60 से 70 के दशक में वो जादू वो कारनामा करके दिखाया था राजेंद्र कुमार साहब ने, जो और अन्य अभिनेता के बस की बात नहीं थी। जी हाँ, इन्हें जुबली स्टार इसलिए का भी दर्जा इसलिए भी मिला क्योंकि इनकी लगातार 25 फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाए था। इनके जन्म 20 जुलाई 1929 को हुआ था और 12 जुलाई 1999 को ये हम सभी को अलविदा कह गए। ये इतने शानदार अभिनेता थे कि इनकी अभिनय में किसी कलाकार की झलक नहीं मिलती थी, इनकी अपनी छाप थी। और बिल्कुल ये अभिनय करते थे तो ऐसा लगता था कि हम सब उनके साथ जुड़ गए हों, चाहे रोने के हो या हंसने के हो किसी भी तरह।

और लव स्टोरी जैसी सफल फिल्मों के साथ साथ और भी कई फिल्मों का निर्माण भी किया और ढेर सारी फिल्में बेशुमार फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और कई सारे सितारों के साथ उन्होंने को स्टार के साथ में अभिनेत्रियों के साथ में काम किया जी। तो आइए कुछ गीतों के माध्यम से इस महान फनकार को हम याद कर लें।

पांचवें टी ट्वेंटी मैच में इंग्लैंड ने एक बार फिर से भारत को हराकर 4-0 से यह श्रृंखला जीत ली है। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की यह लगातार दूसरे दौरे की हार है और विचार करनी होगी, गहनता से विचार की आवश्यकता है कि क्या सुधार किया जाए टीम में और कि वर्ल्ड कप विजेता का ये हाल इंग्लैंड में जाकर हो गया। चलिए, हार जीत तो लगा ही रहता है, गिरने वाले ही फिर उठकर चलते हैं। अब फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2026 में इसका खुमार जो है सो लोगों में बढ़ चढ़ कर ले रहा है और 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची 6 टीम और मेसी की राह में 6 स्विस दीवार। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में शनिवार को मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला खेला

जाएगा। स्विस टीम ने स्वीकार किया कि लियोनेल मेसी की टीम को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उनका दावा है कि उसने अर्जेंटीना के खेल की कुछ कमजोरियों को पहचान ली है और उसी का फायदा उठाकर वो उलटफेर करने की पूरी कोशिश करेगी। राउंड ऑफ में 16 में अर्जेंटीना ने मिस्र के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 से ये जीत दर्ज की, जबकि स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर विनिसियस ने मांगी माफी। विश्व कप खेल रहे दक्षिण अफ्रीका के फुटबॉलर एम्स का निधन, ये मुख्य समाचारों में है। और गोल नहीं विश्व कप जीतना ज्यादा जरूरी है, ये लामिन यामन ने कहा है, स्पेन के युवा स्टार। और सुब्रत पॉल ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कोई गोलकीपर गोल्डन बॉल जीते। और फाइनल की पिच बिकेगी ₹43,000 में घास का एक टुकड़ा, ये भी खबर है। और भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता, तीरंदाजी विश्व कप की ये खबर है। और अल्टीमेट टेबल टेनिस में दबंग दिल्ली ने कोलकाता थंडर ब्लड्स को हराया। और वियतनाम की यह खबर है कि समुद्र में पलटी नाव, 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, 21 बचाए गए। तो ये थी कुछ खबरें। तो इन खबरों के साथ अब आज का हेलो हजारीबाग का सफर पूरा होता है। खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, गीत को एंजॉय कीजिए और आज के दिन की पॉजिटिव शुरुआत कीजिए। वैसे भी विश्व आशा दिवस है, उम्मीद के दामन को आप जो है सो कभी जो है सो न छोड़े, उम्मीद के दामन को पकड़े रहिए और हर मुसीबतों का सामना मुकाबला डट कर कीजिए। आने वाला वक्त आपका ही होगा और अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम से मुझे अशोक को फिर मिलेंगे, इस वादे के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: विविध भारती की एक रचनात्मक पहल है सृजन भारती।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं
1: हाँ।
0: कि इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रस्तुतिकरण होता है।
1: हाँ, तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम विशेष आयोजित किया गया था जिसमें सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक श्री राजेश रेड्डी ने अपनी शायरी से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था।
0: जी मंदाकिनी जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी जानी मानी कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्रा जी।
1: जी बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम में गण्यमान्यों की उपस्थिति थी जिनमें विविध भारती के सेवानिवृत्त कर्मचारी खास तौर से कमला कुंदर जी आई थी, कार्यक्रम अधिकारी कमलेश पाठक जी उपस्थित थी,
1: बिल्कुल
0: सेवानिवृत्त उद्घोषिका निम्मी मिश्रा जी उपस्थित थी।
1: जी हाँ।
0: और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेड्डी साहब का साक्षात्कार किया था हम सबके चहेते उद्घोषक यूनुस खान ने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो विविधा में आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं इस विशेष बातचीत के संपादित अंश। नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी लोगों का विविध भारती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सृजन करना आमतौर पर नवीनता या नवाचार का संकेत होता है, तो विविध भारती ने सृजन भारती के जरिए नवाचार करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प आगे चलता रहेगा। आज इसी कड़ी में सृजन भारती के माध्यम से हम जुड़ेंगे जाने माने शायर राजेश रेड्डी साहब और हमारी मुख्य अतिथि कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्र जी से। शायर जिंदगी की आम समस्याओं को सरलता से कह देने वाले होते हैं। रेड्डी साहब विविध भारती में केंद्र निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और खासतौर से मुझे खुशी है आज की इतने बड़ी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। एक शानदार शख्सियत और एक संजीदा शायर राजेश रेड्डी साहब उन शायरों में से हैं जिन्होंने गजल की नई पहचान को और मजबूत किया है। आपकी गजल को जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज दी है और आपके तीन संग्रह आ चुके हैं उड़ान, आसमान से आगे और वजूद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि रेड्डी जी अपने ही घर में लौटे हैं। विविध भारती में बहुत सारा वक्त रेड्डी जी के साथ बीता है और बहुत सारी यादें हैं। इस आयोजन का नाम हमने रखा है ये जो जिंदगी की किताब है, ये इसलिए क्योंकि ये रेड्डी जी की एक बहुत ही मशहूर गजल जिसे जगजीत जी ने गाया है। तो रेड्डी जी की गजलों की खासियत ये है कि उनकी गजलों का हर शेर बहुत वजनदार हुआ करता है और वो पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन गजलों के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत रेड्डी जी आपका। आज आपसे बातचीत तो करेंगे ही, साथ में आपके अशार भी सुनेंगे, तो यहाँ बहुत सारे पुराने साथी आपके समय के भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती में अपने घर में लौटते हुए?
3: नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मैं तकरीबन 14 साल बाद लौटा हूँ।
2: क्या बात है, वनवास खत्म हुआ है।
3: रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार दाखिल हुआ विविध भारती में।
2: वाह,
3: और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं

0: परिवार जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, निमी जी, कमलेश जी, कमला जी, और यूनुस और ममता तो उस जमाने में भी खूब हमारे साथ एक्टिव रहे। पूरी टीम का जो क्रिएटिव टीम का जो हिस्सा थे बड़े, जिनके बल पर हम बहुत कुछ सोच पाए, कर पाए। अब मेरा सौभाग्य था, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जो विविध भारती का एक मेरे अपने करियर का आखिरी दौर था, लेकिन मेरे अपने करियर का एक पीक भी था वो, कि जिसे मैं अपने अच्छी टीम के साथ और भरपूर टीम के साथ, जिन्होंने अपना शत प्रतिशत जो हम सोचते थे उसके साथ किया, और लोगों ने पसंद किया, और विविध भारती की टीम को, विविध भारती के इस पूरे परिसर को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज ये फिर मौका मिला मुझे।
1: क्या बात है सर। किसी एक गजल से शुरू करते हैं ताकि एक महफिल जो है उसकी एक बुनियाद बन जाए।
0: तरन्नुम से पेश करता हूं शुरू में ही ये गजल। जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गजलें गाई, लेकिन ये गजल मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये उनके आखिरी एल्बम की पहली गजल है जो रिकॉर्ड हुई, लेकिन रिलीज होने से पहले ही एल्बम वो इस दुनिया से चले गए। तो उनकी याद में, उनके सम्मान में मैं ये गजल पेश कर रहा हूं।

0: उड़ान वही खासियत, जितनी बट रही थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बट रही थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ये शेर देखें, जिंदगी का क्रम,
1: इरशाद,
0: इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है,
1: क्या बात,
0: जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर, हर युग का सच है लेकिन इस युग का कुछ ज्यादा सच है।
1: जी
0: सर
1: जी।
0: देखें, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, अजय भाई, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान,
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,

0: क्या बात है। काश के ये जगजीत जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ ये रिलीज हो जाए तो हम सभी के लिए ये एक अनमोल चीज बन जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी दास्तान को शुरू से शुरू करते हैं। जयपुर में वो कौन सा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था? दीप्ति जी कहती हैं कि जब इश्क होता है तब लोग लिखते हैं।
1: जब दिल टूटता है।
2: ये सवाल दीप्ति जी ने पिछली मुलाकात में भी पूछा था एक गोष्ठी में। मेरे साथ ये हुआ कि दिल लगा तो फिर लगता ही चला गया। मतलब ये था कि वो हम लोग एमए में साथ थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके साहस ने इस सपने को सच बनाया
0: जी।
2: और अब वो मेरी अर्धांगिनी हैं और अब मेरी जो सृजन यात्रा में उनका बड़ा योगदान है। मुझे उन्होंने घर की जिम्मेदारियों से एक तरह से मुक्त रखा है, अपना लिखना पढ़ना मैं करता रहता हूँ, तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा वो है, सहयोग भी एहसान भी।

0: तो दिल टूटने का जवाब यह है।
1: उनके लिए कुछ लिखा है सर आपने?
0: पढ़ दूं? ये एक मेरी शुरुआत गीत से हुई थी, वो फिर बाद में गजल में आया, तो ये शुरुआती गीतों में से एक है।

0: क्या बात है।
1: अधरों से पत्र लिखा अधरों के नाम।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी ये एक जिक्र किया कि गीतों के जरिए आपने लेखन की दुनिया में प्रवेश किया था। मुझे ये पता है कि एक गीत आपका ऐसा है जो नीरज जी से बड़ी प्रशंसा उस गीत ने पाई थी, हम चाहते हैं कि उसका जिक्र यहाँ हो।
1: तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ। ये गीत मैंने जब मैं शुरुआत में गीत लिख रहा था जयपुर में मंचों पर कवि सम्मेलन में जा रहा था, तो ये गीत मैंने उदयपुर के कवि सम्मेलन में पढ़ा था जहाँ नीरज जी उस वक्त उनकी क्या शान थी और क्या जलवा था। तो उन्होंने ये वो मुख्य कवि थे और मैं एक तरफ से शुरुआती लोगों में से था। तो ये गीत जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और एक सम्मान और एक प्यार एक आशीर्वाद मुझे दिया। तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ।
0: स्वागत है।
1: जिंदगी की बस्ती में

0: दर्द के समंदर में कामताने ठेला है,
1: समंदर कामताने ठेला है, आदमी अकेला था, आदमी अकेला है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। विविध भारती की आपके दौर की बात कर ली जाए, रेडियो का जो आपका सफर है आकाशवाणी का, उसमें आज मुझे एक दिलचस्प बात यह पता चली कि आपने समंदर के किनारे भी काम किया, रेगिस्तान में भी काम किया, पहाड़ों पर भी काम किया। तो विविध भारती का जो मामला है, विविध भारती में आप लगातार कई बार रहे और इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो हैं आपने शुरू की, जैसे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है वो आपकी देन है, सरगम के सितारे आपकी देन है, यूथ एक्सप्रेस गुलदस्ता है और सखी सहेली सर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। हमारे कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जिक्र कर लूं कि यहाँ हमारी भूतपूर्व घोषिका निमी जी मौजूद हैं और उसके अलावा गोपाल सिंह

0: नेपाली जी की बेटी कमला कुंदर जो कि विविध भारती में हमारी साथी थी, कमलेश पाठक जी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर थी, ये सारे पुराने लोग यहाँ एक साथ मौजूद हैं और आपके साथ ये सारे काम भी कर चुके हैं, तो विविध भारती से जुड़ी कुछ यादें बांटिए।
1: विविध भारती से जुड़ी तो यादें ही यादें हैं, मतलब और खूब यादें हैं। मेरा बेहतर और बेहतरीन समय आकाशवाणी में अगर कहीं गुजरा है तो या तो जयपुर और फिर विविध भारती। ये वो चैनल है जिसे सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, जिसको सुनते सुनते मैंने गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा, और कभी कल्पना नहीं की थी कि उसी चैनल को जिसको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा हूँ मैं कभी आऊँगा और इस चैनल में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उसको निभाऊंगा।
0: क्या बात, तो ये क्या बात?
1: तो ये सौभाग्य है मेरा और मुझे तीन अलग अलग अवसरों पर विविध भारती में काम करने का मौका मिला और हर बार बहुत अच्छी टीम मिली, जिनकी दो सदस्य तो अभी भी बहुत सक्रिय हैं, यूनुस और ममता। बाकी भी वो दौर जब मैं 12 में रिटायर हुआ उससे पहले का जो दौर था बहुत क्रीम टैलेंट था विविध भारती का, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग और अपना 100% देने वाले लोग। तो विविध भारती से विदा होते हुए मैं गर्व भी महसूस कर रहा था, खुशी भी महसूस कर रहा था, मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किस आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सामने नहीं। मैं बहुत शान के साथ, बहुत खुशी के साथ, संतोष के साथ यहाँ से गया हूँ।
0: वापस शायरी की दुनिया की तरफ लौटते हैं। अब मैं आपसे उस गजल की फरमाइश कर रहा हूँ जिसको सुनने के लिए सब लोग यहाँ पर जमा है, जिसे पंकज उधास ने गा के बहुत मशहूर किया था।
1: ये वो गजल है जिसने सारी दुनिया में मेरी पहचान बनाई या मुझे पहुंचाया। आज भी मतलब मैं जाता हूं उससे पहले ये गजल वहां होती है और लोग इसके लिए कहते हैं कि वो जरूर सुनाएं। मैं पेश कर रहा हूं यूनुस।
0: इरशाद, इरशाद।
1: यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ

0: का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स
1: इरशाद
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा,
1: वाह वाह वाह,
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम
1: इरशाद।
0: न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका,
1: वाह
0: न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है। शुक्रिया। और ये गजल का आखिरी शेर, खास शेर, वो बच्चे वाला शेर जितना प्यार से सुना गया, ये भी उतना ही मेरे हिसाब से सच्चा शेर है। अमीर हो गरीब हो किसी मुल्क का इंसान हो, एक पल आता है कि वो कहता है बहुत हो गया ऊपर वाले वापस बुला ले, लेकिन जब वो पल आता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, शेर है देखें। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान
1: वाह वाह।
0: अजब।

0: है और रिहा होने से डर।
1: क्या बात है।
0: अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया कहर इंसान

0: का फना होने से डरता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस गजल से जुड़ी हुई एक बड़ी यादगार घटना है, उसके बारे में जरा बताइए।
0: ये गजल पंकज जी ने गाई, दुनिया में पहुंची। इसके साथ दो घटनाएं हैं।
1: अच्छा, दो है जी, मैंने एक सोचा था। जी जी,
0: एक घटना तो यह कि जब पंकज जी ने गाई, उस वक्त एक सिर्फ दूरदर्शन ही था, ये प्राइवेट चैनल वगैरह तो उस जमाने में थे ही नहीं, तो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आरोही।
1: जी जी, दूरदर्शन उस वक्त था।
0: तो उसमें ये सुगम संगीत के और एक से एक प्रोग्राम आते थे, जिसमें जगजीत जी, पंकज जी, कौन कौन नहीं आया उसमें। तो ये गजल जब उन्होंने गाई तो उस वक्त स्क्रीन पे राइटर का नाम नहीं आता था या नहीं आया था उस दिन, ये जो भी है। तो ये गजल गाई, मेरा एक जयपुर का ही पुराना दोस्त था, वो अपने घर में जैसे सब लोग देख रहे थे, देख रहा था प्रोग्राम। तो ये जब गजल आई तो दीप्ति जी, वो उसका रिएक्शन ये होता है, वो उसने मुझे बहुत बाद में बताया जब मिला, बोले हम लोग देख रहे थे और बैठ के, फिर मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी लोग क्या कहा के गजल कहते हैं इस तरह की।
1: वाह वाह, पाकिस्तानी लोग।
0: तो वो ये सोच नहीं पा रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शायर इस तरह की गजल कह सकता है, ये कही होगी। तो बहुत बाद में बोला। और दूसरी बात ये कि जब ये पंकज दास जी सूरत में कंसर्ट में सुनाने गए गजल, मतलब एक कंसर्ट उनका चल रहा था, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसके चीफ गेस्ट थे, जैसा आज ये दीप्ति जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये गजल सुनाना शुरू किया, ये गजल जब ये शेर आया तो मजरू साहब ने कहा कि पंकज फिर पढ़ो। तो दो तीन बार उन्होंने पढ़वाया। तो जब ऐसा कहा जाता है मुशायरे में या संगीत में, तो ये सुनाने वाले गाने वालों को लगता है कि कहीं कुछ गलत गा दिया मैंने, या गलत बोल दिया, फिर तलफ़ुज़ गलत हो गया, लाइन गलत बोल दी, कुछ ना कुछ गलत हो गया, तभी मुझसे बार बार कह रहे कि फिर पढ़ो। तो उन्होंने फिर पढ़ दिया, तीन बार ये शेर पढ़ा। फिर उन्होंने बताया, पंकज जी ने बताया मुझे कि जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, तो उन्होंने कहा कि ये गजल किसकी थी जो तुम सुनाए। तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, कि बॉम्बे के एक नौजवान शायर हैं, तो उनका ये है। तो बोले मेरी तरफ से उस नौजवान शायर को मुबारकबाद दे रहे, नई तरह की गजल है, अलग तरह की गजल है।
1: क्या बात है, मजरू साहब की तरफ से ये बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जगजीत सिंह के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं।
0: जगजीत जी का प्यार मुझे बहुत मिला, और ऐसा प्यार मिला कि वो शायद किसी शायर के नसीब में ना हो। वो जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, वो ये खास बात यह है, मेरे पहला संग्रह गजल का उड़ान आया, दूसरा जो आसमान से आगे किताब आनी थी, तो मैंने जगजीत जी को फ़ोन किया कि जगजीत जी मैं चाहता हूँ कि इसका जो लोकार्पण या किताब का विमोचन जो भी कहते हैं ना, तो मैं आपके हाथों से करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अलग से प्रोग्राम या डेट वेट क्यों करते हो, नेहरू सेंटर में मेरा उनका केयर का एक सेंटर प्रोग्राम हुआ करता हर साल, कैंसर पीड़ितों के लिए वो कंसर्ट करते थे, तो मेरा वो फला जिनको वो नेहरू सेंटर प्रोग्राम है, उसी दिन आ जाओ, किताब ले आओ, फिर अपन कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा कि, और मैं किताब लेके चला गया वहाँ पे, लेकिन ये था कि वो बुलाएंगे और स्टेज पे सब हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, और फिर तुम किताब लेके आ जाना, और फिर अपन उसका। तो मैं ऑडियंस में बैठ गया जा करके, किताब लेकर के अपनी सारी, और उन्होंने वो गजल गाई, कंसर्ट चल रहा है उनका, उसमें दूसरी या तीसरी गजल गाई, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं,
1: वाह
0: तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो ये गजल गाई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो गजल मैंने गाई ये हमारे प्यारे दोस्त शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और इत्तेफाक से वो यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, और आज उनकी किताब का भी हम चाहेंगे कि हो जाए। तो मैं किताब लेके गया, स्टेज पे गया, उन्होंने रिव्यू खोली और सबके सामने, ऑडियंस के सामने।

0: जो होता है एक तरीका वो किया, क्लबिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने रोका इशारा, बोले राजेश रुकिए। मैंने कहा पता नहीं आप क्या बाकी है। तो फिर उन्होंने उनका म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, मतलब गजलें चल रही है साजिंदे स्टेज से सब, तो उन्होंने साउंड वाले को बोला कि ये एक माइक इधर लगाओ, स्टैंडिंग माइक। तो मैं तो वो एक माइक लगाया और फिर उन्होंने कहा कि ये राजेश वो गजल सुनाइए, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जो आखिर रिकॉर्ड किया।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: कि जब मैंने गजल शुरू की, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, तो मैं मैंने ये पढ़ाई है, तो जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए,
1: गाने लगे। वाह वाह वाह,
0: वो गाने किसी शायर को इतना बड़ा ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद, प्यार क्या होगा कि वो पढ़ रहा है और उसी वक्त वो सिंगर।
1: क्या बात, अनमोल यादें, शानदार शानदार। यहाँ मुझे लगता है कि आप आपसे कुछ सुना जाए अब वापस।
0: तो ये शेर मतलब देखें, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं।
1: वाह,
0: ये मेरी दुआ है अपने बारे में, ये कब चाहा कि मैं

0: बस अपने आप को मंजूर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात।
0: अगर आप खुद को इस स्वीकार स्वीकृत नहीं है तो फिर मतलब क्या बाकी चीजों का।
1: वाह,
0: ये कब चाह के मैं

0: जाओ बस अपने आप को मंजूर हो जाओ। ऋषि देखे खास
1: इरशाद,
0: बहाना कोई तो ऐ ज़िंदगी दे।

0: लिए मजबूर हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। ये कब चाह कि मैं ऋषेर
1: इरशाद,
0: अगर हम अपने आप में टटोले तो हम खुद अपने आप में कितना है, हम एक बहुत कुछ चीजें समझ चुकी हैं और हम खुद कितने रह गए ये देखें। ये कब चाह के मैं मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
1: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
0: मैं अपने आप में भरपूर।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है, क्या बात है, क्या बात है।
0: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं। ये कब चाह के मैं, और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर
1: इरशाद,
0: आईने पे बहुत शेर आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग। ये कब चाह के मैं न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
1: वाह, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चक ना चू।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, इसे फिर पढ़िए। वाह वाह वाह वाह,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चक ना चूर हो जाऊं। ये कब चाह के मैं मशहूर हो जाऊं।
1: शुक्रिया। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अब ऑडियंस के लिए तो फोरम ओपन करता हूं, आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो ये माइक है और आप पूछ सकते हैं।
2: सर मेरा नाम धीरज पुरोहित है। सर मैं शायरी से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और मुझे उसका मैं क्षमा चाहते हुए कूटनीतिक नहीं लेकिन सच्चा उत्तर चाहिए। दिल्ली के एक शायर हैं, उनका शेर इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि शायद ये शेर की श्रेणी में नहीं है। उनका शेर है कि कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। सर ये क्या सही है, यानी कोई भी मिठाई मिठाई नहीं होती, यानी जो मिठाई होती है वो सब एक ही कैटेगरी की होती है, उनमें भी तो विविधताएं होती है ना, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
1: बड़ा मुश्किल सवाल है
2: लेकिन सर मैं आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से जरूर।
0: नहीं बिल्कुल सही है पूरे जी, वो शेर उसकी सच्चाई अलग है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अच्छे गायक बुरे गायक में फर्क होता है, अच्छे शायर बुरे शायर में फर्क होता है, अच्छे कहानीकार बुरे कहानीकार में फर्क होता है, हर अच्छे खिलाड़ी बुरे खिलाड़ी में फर्क होता है, तो लेवल और स्तर का तो फर्क होता है। मतलब जैसे सुर में गा देने को सिर्फ गाना नहीं बोलते, गाने में असर होना चाहिए।
2: असर,
1: क्या प्यारी बात है,
0: है ना, गाने में असर होना चाहिए।
2: जी सर आपके उत्तर का तात्पर्य यह है कि वो मुकम्मल शेर तो है लेकिन शेरों में भी वर्गीकरण जरूर है,
0: जिसमें असर है वही सच्चा शेर।
2: जी जी
3: सर से क्या सवाल करूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने इतने सुंदर गीतों से अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके बाद फिर कभी गीत लिखे ही नहीं, और क्यों?
0: हाँ नहीं, बहुत सही सवाल है कमलेश जी। मैं शुरू में मंच पे गीत पढ़ता था, जो नीरज जी वाली घटना मैंने आपको बताई, मंचों पे राजस्थान भर में घूमता था, बाहर भी गया, लेकिन जयपुर में जो हम उम्र लोग होते हैं जिसमें हिंदी वाले भी होते हैं उर्दू वाले भी होते हैं, आपका उठना बैठना होता है, हाँ, तो जो मेरे हम उम्र जो शायद दोस्त थे जो जिनके साथ उठना बैठना भी था, तो वो उनको सुनते सुनते भी फिर वो उनकी कुछ गजलें सुन रहा, और फिर कुछ मुशायरे वहाँ पे जो अटेंड किए जिसमें बड़े बड़े शायर जो है ना, जयपुर में बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे, और ये सब मजरू सुल्तानपुरी साहब, कैफी आजमी साहब, निदा साहब, बशीर बद्र, शहरयार, ये सब बड़े बड़े शायर वहाँ पे आते रहे। तो वो जब मैंने देखा कि दो मिसरों में पूरी बात हो जाती है। और गीत जो है ऐसा आसान भी नहीं है कि आप गीत से लेकर आसानी से शायरी में आ जाए और दो पंक्तियों में कहना शुरू कर दे, लेकिन वो उस विधा ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बांधा, मैंने उसमें कोशिश की और वो मेरे यार दोस्तों को सब हम उम्र लोगों को ठीक लगने लगी और बात कुछ जम गई और फिर मैं वो कहने लगा तो फिर गजल का ही जादू मुझ पे सवार हो गया वो शेर कहने पे, तो वो मैंने की। तो फिर जब हुआ तो मैंने गजल को अपनाया और फिर शायद गजल ने मुझे अपना लिया। जी
1: क्या बात है।
4: नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई नया नया शायर बनना चाहता है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि कविताएं बहुत से लोग लिखते हैं और वो बहुत ही अलग अलग तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं, वैसे शेर भी बहुत ही अजीब तरीके के हो रहे हैं जिनको शेर शायद नहीं भी बोला जा सकता है, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा में बढ़ सके।
1: ये लड़की अपने लिए पूछ रही है जी। नेहा शर्मा,
0: नेहा बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और खास तौर से आपकी जनरेशन के लिए इस दौर में कुछ चीजें आसान भी हुई हैं और कुछ चीजें गलत भी हुई हैं। ये सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें ओपन माइक और सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर है ना, और व्हाट्सएप और ये सब, इसमें आपने आपका शौक है सिर्फ और आपने दो लाइन लिखी और उनको मान लिया कि जैसे दीप्ति जी ने कहा कि मान लिया कि ये शेर है बस, और उसको आपने पोस्ट भी कर दिया और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, हम उम्र लोग हैं या परिचित लोग हैं वो उस पर वाह वाह भी कर देंगे है ना, और वो दाद मिलना भी शुरू हो गई और सारा कुछ हो, और उससे एक गलत फहमी पैदा हो गई कि मैं तो एक्सेप्ट कर ली गई है, कर लिया गया मैं शायर हूँ। जब हम जैसे लोग शुरू हुए थे तो ये सब नहीं था, हम सिर्फ गोष्ठियों में होते थे, एक दूसरे को सुनते थे, सुनाते थे और उसके बाद आत्मविश्वास जैसा कुछ चीज़ आती थी, फिर अखबारों को भेजते थे, पत्रिकाओं में भेजते थे, फिर वहाँ एक संपादक जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी जो उसको देखता था कि वाकई ये गज़ल है या नहीं है, तो अब तो संपादक भी गायब हो गए, तो ये इतना आसान नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोशल मीडिया ने आसान तो कर दी हैं, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए और लगातार पढ़ना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए, ये जुनून का काम है और वो अगर जुनून है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। जी
1: रेडियो की तरफ वापस लौट रहा हूँ सवाल के जरिए।

0: जब अचानक ये तय हुआ कि सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होना है, वो दिन याद है सर आपको?
1: जी, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन वो जमाना याद है और बिल्कुल हंगामों वाले दिन थे।
0: बिल्कुल अचानक सिग्नेचर ट्यून बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है,
1: डेट तय हो जाती है कि फलां से शुरू करना,
0: लॉन्च होना है बस। और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी,
1: तो उसके बाद फिर वो सिलसिला सिग्नेचर ट्यून से लेके यूनुस है और राजेश अपने जोशी,
0: राकेश जोशी
1: एक्सपर्ट, ये दोनों लोग जो थे मशीनों के मास्टर और सिग्नेचर ट्यून के तो एक्सपर्ट हैं दोनों के दोनों। राकेश जी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये विविध भारती की जितनी सिग्नेचर ट्यून्स हैं, ये इन दोनों का करिश्मा है, इन दोनों का कमाल है।
0: जी,
1: और
0: शुक्रिया।
1: तो फिर सिग्नेचर ट्यून भी बनी और सब चीजें सिलसिला शुरू हुआ और बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम शुरू हुआ और पहले ही प्रोग्राम से लोगों का दिल लोगों ने जीत लिया। थैंक यू।
0: बिल्कुल, यहाँ कमलेश जी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना माइक उनको देता हूँ, सखी सहेली की शुरुआती याद के बारे में वो भी अपनी कुछ बात कहे।
2: सखी सहेली की याद तो ऐसी है कि वो कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, लोगों की चिट्ठियां आना शुरू हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है प्रोग्राम, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। और दूसरी एक बड़ी जो खास मेरे साथ घटना घटी, किसी ने चिट्ठी लिखी कि अगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो कमलेश पाठक प्रोड्यूसर कैसे है। उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कमलेश पाठक खुद प्रोग्राम में बैठे एक बार तो बताएं कि पुरुष नहीं है, ये महिला है। और जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लगा मेरा थोड़ा लोकल टच है बोलने में तो शायद पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उनको मेरा बोलना ही अच्छा लगने लगा और बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी कि आपका जो लोकल टच है, जो क्योंकि विविध भारती बहुत रिमोट में भी सुना जाता था ज्यादातर, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। निमी जी आप बताइए।
3: मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। कई बार मैं जब रिटायर हो गई उसके बाद भी मुझे प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था। वो जमाना ऐसा था कि रिटायर्ड लोगों को भी बुलाते थे।
4: हम लोग रेडियो की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में आते हैं। और सवाल मेरा ये है कि राजेश जी, आप पूरे विश्व में मुशायरे पढ़ रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, बहुत नाम है आपका हर जगह, लेकिन ये मुशायरों की जो दुनिया है, पहली बात तो ये कि इसमें प्रवेश कैसे हुआ, दूसरी बात यह कि इतना साफ सुथरा लिखते हैं आप, तो वहां कैसे जगह मिली?
0: क्या प्यारा सवाल है, बहुत सही,
1: धन्यवाद दीप्ति जी। मैंने नेहा को जवाब देते हुए जो बात कही कि हमने जिस दौर में शुरू किया, हमारी ग्रूमिंग, हमारी स्कूलिंग कहना चाहिए शायरी में भी कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त अदाकारी का कोई काम भी नहीं था। मतलब ये अदाकारी शुरू हुई है बहुत बाद में जाकर के, जो मैंने नाम बताया आपको, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, बशीर बद्र, निदा फाजली, तो ये हमारे बड़े लोग थे, गुलाम रब्बानी ताबा, तो ऐसे लोगों को तो सुन सुन के हम स्टेज की तरफ आकर्षित हुए
0: जी।
1: तो इनका कोई अदाकारी नहीं, शायरी है, प्योर शायरी है ना। और खुमार साहब तरनुम के इतने बड़े बादशाह
0: जी
1: है, मजरू साहब भी तरनुम से सुनाते थे, तो ये हुआ। और फिर जो आपने कहा ना कि एंट्री आपकी कैसे हुई, तो मेरी एंट्री तो गीत से हो गई थी मंच पे, तो मंच का विश्वास जो आ गया था, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं और ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था गीत के। जयपुर में जो मेरा बड़ा मुशायरा हुआ, जिस मेरी एंट्री हुई और जिससे मुझे सब जगह जाने का एक तरह से वो पासपोर्ट मिला, वो था नेहरू सेंटर का मुशायरा और निदा साहब ने उसकी निजामत की थी। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया नेहरू सेंटर के मुशायरे में, ये 87 की बात है, 86 में बॉम्बे आया, 87 में नेहरू सेंटर का बड़ा मुशायरा जिसमें निदा साहब ने संचालन किया और मैं उसके शुरुआती शायरों में से था। उस वक्त मंच पर सारे अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, खुमार बाराबंकी, निदा साहब, बशीर बद्र, मुमताज राशिद, जफर गोरखपुरी, कोई बड़ा नाम लीजिए जो नेहरू सेंटर का मुशायरा ऐसा होता था, बड़ा मुशायरा
0: जी जी।
1: और सुनने वालों में आपको हैरानी होगी, सुनने वाले वो होते थे और थे उस वक्त दिलीप कुमार,
0: वाह,
1: अजीत फिल्म एक्टर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, ऑडियंस खचाखच भरा हुआ नेहरू सेंटर, ये हर साल का उनका वो था। तो और मैं बिल्कुल बॉम्बे में, एक तरह से मेरी शुरुआत ही थी, निदा साहब ने मुझे सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मौका दिया, वो पहली गजल पढ़ी और वो गजल मुझे दो बार सुनी गई, मतलब बार बार मुझे प्यार मिला उस गजल ने, इतना प्यार दिया, इतनी पहचान दी और इतना

0: विश्वास दिया, और उससे फिर वो एक पहचान बात से बात निकलती है और लोगों से लोगों तक पहुंचती है, और वो उसकी कैसेट वगैरह, जैसे दुबई के कैसेट आने लगे, इधर इधर के कैसेट दुबई जाते थे, तो एक बात पहुंच गई कि भैया ये शायर है जो अच्छा पढ़ता भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से एक एंट्री हुई। तो मुझे नाटक करने की या अदाकारी करने की और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और अब तक किया हुआ है।
1: बिल्कुल सर। तो उसी गंभीरता से अब आपकी अगली गजल हम सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली? जो नेहरू सेंटर में सुनाई थी?
0: नहीं, वो सुना चुका पहले। जानी
1: कितनी उड़ान, बाकी है। हाँ, वही थी।
0: हाँ।
1: तो कोई और गजल सुनते हैं।
0: ये गजल भी मेरे लिए खास गजल है। हाँ, तो ये उर्दू में बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहादुर शाह जफर के जमाने से मिलकर हो रही है। बड़े बड़े उस्ताद भी जो हैं वो तरही गजल कहते हैं, यानी कि एक मीटर दिया जाता है और उसमें हर एक शायर अपने अपनी गजल कह के लाता है। तो रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी, जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो उन्होंने एक तरही मुशायरा कराया। तो एक मीटर देते हैं, एक पंक्ति देते हैं, लाइन देते हैं, उस पर अब हर शायर अपनी अपनी गजल लेके आता है। तो हिंदुस्तान भर के शायर वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिनिधि शायर थे, मुंबई से मैं गया था तो मैंने ये गजल कही, और मेरा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती की ये गजल वहाँ मुझसे बहुत प्यार से दो बार सुनी गई, और सब दिग्गज मौजूद थे उर्दू दुनिया के वहाँ रामपुर में। तो उसने एक मुझे बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने, कहां से हम
1: क्या बात।

0: से हम। और ये शेर, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून, नाराज है जमी से खफा आसमान से।
1: वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया। अब क्या बताए तू। और ये गजल का खास शेर, एक लफ्ज शब्द होता है शराब, एक तो शराब है जो कि बहुत लोग पीते हैं, एक शराब यानी जो मृग जल होता है, यानी रेगिस्तान में पानी होता नहीं लेकिन पानी जैसा दिखता है, मिराज जिसे बोलते हैं, मृग मरीची का है ना जो कुछ है। हाँ, तो अब ये शेर देखें, अब क्या बताए टूटे हैं ऋषेर, अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास,
1: अब तो शराब से ही बुझाने लगे हैं प्यास।

0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। अब क्या बताएं। और एक अलग सा शेर है, एक जमाना था कि टीवी पर अक्सर वो नार्को टेस्ट का बहुत जोर था, इसका नार्को टेस्ट, इसका नार्को

0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: बताए टूट, और गजल का आखिरी शेर, अब क्या बताए टूटे हैं गम, बिक रहे थे मेले में।
0: वाह,
1: गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर।
0: क्या बात है, क्या बात है, गम बिक रहे थे,
1: गम बिक रहे।

0: है हर एक दुकान।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है।
0: अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से।
1: बहुत शानदार गजल आपने सुनाई और आपकी इस पूरी यात्रा में आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जिंदगी में क्या महत्व आकाशवाणी का रहा है और आकाशवाणी की इस 90 बरस की यात्रा में ये जो पूरी यात्रा है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है।
0: मैं आकाशवाणी परिवार का सदस्य हूं और रहूंगा। इसी ने मुझे एक सांस्कृतिक संस्था ने जिसको सुन मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस संस्थान में एक मामूली से कार्यक्रम पहले पे कैजुअल युवाणी जब शुरू हुआ था जयपुर में तो युवाणी का ऑडिशन देने गया था। एक युवाणी के आर्टिस्ट के तौर पर मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया और वो सुख अलग ही था कि जब आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं और आपको ये लगे कि अब आप आकाशवाणी में कवि के रूप में और नाटक कलाकार के रूप में कि आपकी आवाज़ अब आकाशवाणी पे आएगी, वो एक अलग थ्रिल था, वो एक ज़माना ही अलग था। तो मेरा तो सफ़र ही, हालांकि मैं रंगमंच पत्रकारिता सब कुछ की मैंने, लेकिन मेरा क्रिएटिव सफ़र जो जिसमें संगीत भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें लेखन भी है और कार्यक्रमों का अलग अलग संयोजन भी है, तो मेरा जो क्रिएटिव जो सफ़र है वो शुरू से ही जो मैंने इतना साल 1980 से लेके 2012 तक गुजारा अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर और ख़ास तौर से विविध भारती, और मैं जयपुर को याद करूंगा कि जयपुर ने मेरी नींव रखी और विविध भारती ने मुझे एक वो आकाश दिया कि मैं सब जगह अपनी बात अपनी परिकल्पना को साकार कर सकूं। तो विविध भारती के अलावा मैं आकाशवाणी के 90 साल की बात करूं तो ये वो संस्थान है जो अगर दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई चीज़ पहुँचती है तो आकाशवाणी है। न अखबार पहुँचते हैं, टीवी तो बहुत बात की चीज है और बाकी तो सोशल मीडिया तो खैर अभी कल भी पैदा हुआ है सब कुछ। तो एक जमाना था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली कोई चीज थी तो या तो फिल्म थी या आकाशवाणी, फिल्म में पहुंचती थी और या आकाशवाणी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था और आकाशवाणी के लिए आपको जिसका सफर हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, बनाए रखने में, और आज भी जितनी रीच हमारे इस माध्यम की है शायद किसी माध्यम की नहीं है, और इस माध्यम को जितना सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए और इसकी इज्जत की जाए और इसका एहसान माना जाए 90 साल होने के बाद या होने पर, इस आकाशवाणी के लिए अपना धन्यवाद भी देता हूँ, कृतार्थ भी उसका और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शानदार महफिल आपके साथ रही है और यूं लगता है जैसे बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चलते चलते आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे, आपके मन की गजल।
0: रंग मौसम का हरा था पहले पेड़ ये कितना घना था पहले।

पहले बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी

0: पहले। और ये शेर हम अक्सर घर के बुजुर्गों से कहते हैं कि आप रहने दें, आपको ये मालूम नहीं, आपको ये नहीं आता, हाँ आप इस, ये और जमाना है, हाँ अब ये नहीं चलता। और अब ये शेर देखें
1: जी,
0: हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी उसी मोड़ पे आएंगे
1: जी।
0: और ये शेर देखें आप, रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा।
1: वाह, जो नया है वो पुराना होगा,
0: जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया। जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और ये शेर खास तौर से हिंदुस्तान के लिए, मसाला कब थी इबादत गाहें।
1: वाह,
0: मसला यानी प्रॉब्लम और इबादत गाहें हमारा पूजा स्थल। मसाला

0: था पहले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला कब थी इबादत गाहे, दिल में इंसान के खुदा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और जुल का आखिरी शेर
1: इरशाद,
0: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था।
1: ओ हो, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया। मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्या बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में आए और आपने सृजन भारती की इस महफिल को रोशन किया सर।
2: और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, दीप्ति मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे आज की हमारी मुख्य अतिथि साहिबा। मैं बताना चाहूंगी, एक शानदार शायरा, जानदार अभिनेत्री और कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं दीप्ति जी। आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं, बर्फ में पलती हुई आग है तो है, और बात दिल की कह तो दें, ये उर्दू में है, और एक किताब और है यहाँ वहाँ कहाँ,
3: एक और आ गई है तुम्हारे लिए।
2: तुम्हारे लिए स्वागत है। और आपकी रचनाओं को गुलाम अली साहब, कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिहरन जी ने, उदित नारायण जी ने, श्रेया घोषाल, सोमा घोष, कविता सेठ और मधुश्री जैसी बड़ी कलाकारों ने अपनी आवाज भी दी है। तो दीप्ति जी आपका स्वागत है। इनकी चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी लिखी हुई, जिससे तुमने खुद को देखा हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे, सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे, हम एक मीठा दरिया थे। दीप्ति जी
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अभिभूत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ पे राजेश रेड्डी साहब परफॉर्म कर रहे हैं उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि हूँ। राजेश जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे ख्याल से 2002 या 2003 में एक रेलवेज का प्रोग्राम था जिसमें निदा साहब के साथ आप आए थे, वहाँ हम लोग की मुलाकात हुई, हम लोगों ने मुशायरा पढ़ा, उसके बाद बहुत एक लंबा सफ़र साथ में रहा, हम लोगों ने बहुत सारे मुशायरे

0: साथ में पढ़े, यात्राएं की। राजेश जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़े समय कहना चाहूंगी कि ये बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, और बहुत चुप रहना, बहुत कम बोलना, बहुत रिजर्व रहना, तो इनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। आप बरसों बरसों साथ रहिए लेकिन इनको खोल पाना, इनको जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज का ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा रहा, मैं बधाई देना चाहूंगी। इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो श्रोता हैं वो तो अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो शायर है, जो कवि है, वो सहृदय श्रोता ढूंढता रहता है। वो चाहता है कि उसको ऐसे श्रोता मिले जहाँ पे वो अपना दिल खोल सके, उसको वो जगह नहीं मिलती तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है और सिर्फ उतना खोलता है जितना सामने की पात्रता होती है। तो जब उसको ऐसा पात्र मिल जाता है तो उसका दिल खुल जाता है, और आज वही हुआ है। राजेश जी ने दिल खोल के जो है अपनी बात कही। यह है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवानागर तो क्या खता है शम की, जल गया परवानागर तो क्या खता है शम की, रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। और ये सब दोस्तों के नाम, सारे दोस्त, जिसके भी दोस्त जहां भी हैं, कि दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है, कुर्बत का मतलब होता है निकटता, समीपता, कनेक्शन, कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है।
1: आप सुन रहे थे सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी थी मंदाकिनी जी आपने
2: जी, और धन्यवाद ज्ञापित किया था आपने यानी जयंत साहब ने।
1: और इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार,
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूक्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से

0: शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक या दो नहीं कई सारे कलाकारों को याद करने वाले हैं। तो यादों की महफिल में बहुत सारे कलाकारों की यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन, नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, इंदीवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल में हम लेकर आए हैं हमारी कुछ यादें कुछ अलग अलग कलाकारों के साथ। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की, किसी की जन्मदिवस है, किसी का पुण्यतिथि है, तो हम उन सभी कलाकार को याद कर रहे हैं। और आज ये फिल्मकार विमल राय का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा सजाए गए, पिरोए गए इन गीतों को।

हम सुन रहे थे विमल रॉय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एसडी वर्मन, सचिन देवर्मन ने इसे गाया है और सचिन देवर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनीता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म दो बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए हम सुनते हैं एक और गीत, जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: ओ, संजय

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को। हमने सुना विमल रॉय एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को। और अब हम चल रहे हैं, आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे हैं झुक गया आसमान, फिल्म से सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ सजा हुआ है यह गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में आस का पंछी फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्म दिवस है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज में। और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन। नमस्कार स्वीकारें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सुरीला सफर। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि सुरीला सफर में हम भेजते हैं आप तक एक इबारत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहां से आपके साथ होती हैं बहुत सारी बातें। तो जो इबारत हमने भेजी है उसे हम आपके सामने पढ़ देते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि एक जीवन में किसी का साथ मिल जाए तो वही हमें 2 से 11 बना देता है। कभी कोई तीसरा उस साथ को पूर्णता देता है तो कभी वही उसे विच्छिन्न भी कर देता है। 4 लोग कभी प्रशंसा की थपकी देते हैं तो कभी अपने वचनों से हमें परखते भी हैं। 5 इंद्रियां कभी जीवन पथ की सहचरी बनती है तो कभी कभी साथ छोड़ती प्रतीत होती है। और 6 इंद्रिय वो भी अपने संकेत देती रहती है। 7 समुद्रों से सुसज्जित यह वसुंधरा फिर भी अपनी ही लगती है क्योंकि इसमें हमारी स्मृतियां और अनुभूतियां बसी होती हैं। 8, 9, 10 न जाने कितने अंक और कितने संबंध जीवन की गणना में जुड़ते जाते हैं। कभी 100 पीड़ाएं भी धैर्य से सह लेते हैं और कभी सहस्रों प्रसन्नताएं भी मन को आनंदित नहीं कर पाती हैं। और इस इबारत को हमने पढ़ने के बाद बहुत सारे संदेश जो हमारे श्रोताओं ने पहले से भेजे हैं, उन संदेशों में से कुछ संदेश हम आपके साथ साझा करते हैं। अब उन संदेशों में से एक संदेश, जैसे हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता लिख रहे हैं कि जो जीवन दर्शन की विभिन्न झांकियां हैं ना, वह प्रदर्शित करती अंकीय विश्लेषण पूर्ण अलंकृत गद्यांश है। अनेकों के बीच फलता फूलता एकाकी जीवन कालांतर में पुनः संख्या गरिष्ठ परिवार में परिणत हो सहस्त्रादि दुखों सुखों में भवर को पार करते हुए अतिक्रम करता है, अंततः पुनः एकाकी महाप्रयाण कर जीवन के सफर को अंजाम देता है। जीवन सफर को संगीतमय सफर का आह्वान करती कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संख्याएं अंक 1, 2 शब्दों आ आ ई ई उ आदि के पूर्वज हैं। शब्द तो अंकों के बहुत बाद में आए और आते ही चले जा रहे हैं, जबकि संख्याएं सबकी सब आ चुकी हैं। क्या कोई नई संख्या बता सकता है? देखिए, अंक से कैसे बना है एक शब्द, एक से बना एका। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और एक दूसरे के बिना इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया बात ये हमारे साथ कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कही हमारे श्रोताओं ने, तो हम आपको ये सारी बातें भी सुनाएंगे, लेकिन सुनाते हैं ये गीत। और इस गीत के पहले हमारा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, और वो प्रश्न ये है कि जीवन में अगर अंक ना हो तो क्या होगा? जरा विचार कीजिए।

कि अंक गायब कर दिए जाएं, तो हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, जरा सोचिए, बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है, पर बाकी श्रोताओं को तो भी उत्तर देना बनता है। तो बताइए, अगर जीवन में अंक नहीं है तो जीवन कैसा होगा? चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत राज्य के 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ऊर्जा विभाग विभिन्न जिलों में स्मॉल मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिलों की नदियों और नहरों के लिए किनारे लगाए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। रांची में अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने राजनीतिक जीवन का लंबा सफर तय किया है। ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए, आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की राजनीति का उन्हें कोई लालसा नहीं है। उन्होंने धर्म कर्म, सामाजिक उत्थान, लेखन कार्य और देशाटन करने की इच्छा जताई है।
1: राजनीति में एक पड़ाव आना चाहिए कि आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए राजनीति से। तो 2029 में जब चुनाव होगा तो राजनीतिक उम्र हमारी 50 वर्ष की हो जाएगी। तो मेरे मन की इच्छा यही है, जो मैं साफ साफ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो 2029 के चुनाव में मैंने अभी तक मन बनाया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद के एक मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के अतिक्रमण और उसकी पहचान से जुड़े विवादित सवालों का फैसला रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, जिनका निपटारा दीवानी अदालत ही कर सकती है। प्रदेश भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सरकारी दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की।
2: राज्य सरकार को किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको समय पर खाद बीज भी नहीं मिल रहा है, सरकार को उसे प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, धानों का जो मूल्य होना मिलना चाहिए वो भी उनको समय पर नहीं मिल रहा है, और ऋण माफी की जो बात किसानों के लिए उन्होंने की थी पिछले बार वो भी सब छलावा साबित हुआ है। तो यह सरकार जो चल रही है पूर्णतः किसान विरोधी है और किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। साइबर अपराधों की जांच के दौरान फ्रीज या होल्ड किए गए बैंक खातों की समस्याओं से आम जनता और अब व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है।

0: इसके तहत जीआरएम पोर्टल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित निर्दोष खाता धारकों को पारदर्शी ऑनलाइन और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल airnews ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल परिचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने रथ यात्रा 2026 के दौरान पूरी आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मेदिनीनगर सदर और पांकी थाना क्षेत्र में 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम अफीम, 50 किलो डोडा, 15,450 रुपए नकद, कार, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
1: ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत एनडीपीएस के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। पाकी थाना क्षेत्र में जांच करने के क्रम में 50 किलोग्राम डोडा की रिकवरी हुई और उसके साथ साथ लगभग 250 ग्राम अफीम भी जब्त, जो इस तस्करी में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। दुमका जिले में वर्षा का पैटर्न बदल गया है, जिससे खरीफ की खेती का जोखिम बढ़ गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया है कि पिछले 35 सालों में दुमका जिले में वर्षा की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वर्षा के समय और वितरण में बदलाव आया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो रही है। उधर जामताड़ा जिले में अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि कम बारिश को देखते हुए मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।
2: जिले में 50% से कम बारिश हुई है, बाकी जगहों पे अभी रोपा नहीं हो पा रही। इसी को देखते हुए जिला में कंटीजेंट प्लांट के तहत अरहर का और मूंग का वितरण बीज का किया जा रहा है 100% सब्सिडी में और लैंड स्पैक्स के द्वारा 50% सीड एक्सचेंज, और अभी मिलेट मिशन का प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। उसके द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपया करके मिलता है, किसान 5 एकड़ तक 15,000 रुपये ले सकते हैं।
0: मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश के संकेत हैं, जिससे राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद है। रांची में आयोजित नगड़ी प्रीमियर लीग मुकाबले में कल रॉयल्स की टीम ने टाइटंस को 43 रनों से हरा दिया। रॉयल्स ने 20 ओवरों में 128 रन बनाए, जबकि टाइटंस की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंद पर 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। दस अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, जीरो एंड वन। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सात नंबर अच्छा लगता है क्योंकि सात का अद्भुत महत्व है, सात दिन है, सात स्वर हैं, इंद्रधनुष के सात रंग हैं, सात महाद्वीप हैं, सात समुद्र हैं, सप्तर्षि सात हैं और विवाह के फेरे भी साथ होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव जरूर हुए, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि 9 उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है, कोई कहता है कि उन्हें 7 नंबर पसंद है, किसी को 8 पसंद है, किसी को 3 पसंद है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल।

होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो तो शून्य हो जाता है। और किसी को 6 पसंद है, किसी को कोई अंक 5, 25, 30, 29 कई सारे अंक पसंद है, किसी को 12, 21 पसंद है, किसी को 1 अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि 13 अंक लोग गलत मानते हैं और 13 बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में 13 अंक को गलत माना ही नहीं गया शायद। किसी को 18 नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूँ क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूँ अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत के ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है यानी गायक जो है वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आँख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील पद्म दस पद्म शंख महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है, सागर छह सागर दस सागर पंद्रह सागर तैतीस सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे तो खरब तक पता है, एक खरब सौ अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है, महाभारत की युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे, और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं, और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया जी, ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रहे हैं रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है, और हंसते हुए कह रहे हैं कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, तो मेरी जॉब का क्या होगा ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये

रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान। कई सारी चीजों की बात आती थी तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो, किताब हो, कोई भी चीज हो? आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के? वर्ग पहेली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहेली है, इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए, और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

शंकर जयकिशन के संगीत के साथ आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज़ बहुत पसंद है, पूरी वादियाँ गूंजती हैं इस आवाज़ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है, और एक ग्रंथ है आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना, इसमें खगोल शास्त्र, गणित, काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है लीलावती ग्रंथ का, फिर से बात आई है, इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है, और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं, और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दश कुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित, मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं, मगर आज बच्चों को 1, 2, 3 तो आते हैं, पर हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 ना पढ़ने में आते हैं ना लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है, और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है। और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, भी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है, और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणुविज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं, और पहला कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6 लाख पद्य हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हो, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हो, इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले ज़माने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है जी। 5 सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है जी। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं, और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं, और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवर्मन का संगीत, और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना 5 पैसे का एक सिक्का और 1 पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, 6 पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों

मैं 100 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए, अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे? ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही, मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्वेता अशोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार दो, देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित। जी बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है, वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है। वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये जो अगला गीत है इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

0: किसी का इंतजार,
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

हम सुन रहे थे तेजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई, तो एक शरीर में कितने, दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले, बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए हाँ हाँ
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ

0: की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

0: खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।

0: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

लहरियोडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन दे दे सजन नदादा किट झट झट झट झड़न झट झट झगन का झगन का किट झट झट झगन का जी सजन नदा साधा झट झट झगन का साधा झगन का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कर

0: कराए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओटीसी मैदान से 15 फ्रेंड्स कॉलोनी तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिदिन अपनी दुकान लगाकर आजीविका अर्जित करते हैं, लेकिन उन्हें वर्षों से स्थायी स्थान के अभाव सहित कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री के साथ रांची की मेयर रोशनी खलको भी मौजूद थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है।
1: पन्ना की अवैध तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और कुल 1 kg 95 ग्राम पन्ना के साथ और 2 मोटरसाइकिल और इनके 3 फोन और कुल 2300 रुपए नकद के साथ इनको गिरफ्तार किया गया।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू ने बताया कि यहां अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड के नाम पर नकली शराब तैयार की जा रही थी।
2: टीम के द्वारा विधिवत रूप से जब परिसर की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण, कैरामेल, स्पिरिट, ढक्कन, रेपर, विभिन्न ब्रांड का ड्रम जब्त किया गया। 35 लीटर स्पिरिट जब्त किए, तो कुल मिला के लगभग 350 पेटी निर्मित विदेशी शराब और लगभग 4,000 लीटर स्पिरिट, भारी मात्रा में नकली होलोग्राम, खाली बोतल 60 बोरा, कार्टून 1,000 पीस, नकली ढक्कन 25,000 पीस जब्त किए।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित राजस्थान भवन के समीप चोरों ने लगातार 2 रातों में करीब 10 दुकानों से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर इन दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, कीमती सामान और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए, जबकि कुछ दुकानों में ताले तोड़े जाने के बावजूद चोरी नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि चोरों ने अधिकतर किराना, मेडिकल, हार्डवेयर और अन्य प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। रांची के मोरहाबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बढ़ाना।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने, और

सुनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया उसी पोस्टकार्ड उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं, ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरशाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चौपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

प्यार सहारा। हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्टकार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भावभूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओ जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया। वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाता है, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों, आप क्यों? ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए। वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या?
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो।

0: 10 जन्म तक नहीं होती, पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
1: कॉफी पियोगी क्या?
0: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
2: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
3: कौन सी?
2: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
3: अच्छे लगे तुम्हें?
2: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
3: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
2: क्यों क्यों क्यों?
3: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
2: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
3: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
2: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
3: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
2: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
3: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
2: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
3: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहाँ से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैयां डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस गुनगुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविता बाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसोफर तो है नहीं, हम बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को। तो
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी।

0: जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
1: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
0: हाँ, शायद ठीक कहती हो। मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
1: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूँ, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है?
0: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
1: जीजा जी,
0: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी। उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
1: मैं नीचे जाती हूँ।
0: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
0: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
1: यही कहना था?
0: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
1: जी,
0: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
1: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
0: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
1: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है, इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ, मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो, ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न, पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भैया, अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ।
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूँ मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिख में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्ही ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूँ मैं, क्या करूँ, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हूँ, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं, किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
0: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
1: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
0: जमती थी? पता नहीं।
1: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
0: पूछिए।
1: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
0: जी।
1: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
0: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
1: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
0: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा, बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी। कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार वो अकेले

0: आती है साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जुबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय, सच कहूँ मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर

0: अपना सितार?
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा। पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाओ?
1: अरे नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू, फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते तो अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन। पर ये बता मेरी जान, कब हुआ?
1: देख पल्लू, तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा, तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर? तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे यार, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है, नहीं?
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियाँ बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसी हुई, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपनी ये फिलोसफी, हानी तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना,

0: ये सब न मुझे अच्छा लगता है और न ही शेखर को।
1: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ। मुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है।
2: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। रांची के मुरहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया।

0: बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
2: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
2: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
2: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं,
1: और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरुभव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल बागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट।

0: पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था. और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया.
1: गजब.
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है.
1: वो आराम से बेच सकते थे पैसे.
0: हाँ, बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे. पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया.
1: गजब.
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे. फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे.
1: आज भी मौजूद है.
0: आज भी मौजूद है. और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए. तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा. तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है. तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे. दे डोंट नीड टू डू दिस. मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था. तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से. पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया. तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए. बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो कलाकार थे.
1: बिल्कुल.
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था.
1: क्या बात है.
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा. और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है. बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ. ऐसे ही पापा का भी था. तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है. और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है.
1: बिल्कुल. रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें.
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी. और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है. और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते. तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर
0: होती गई. और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था. और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो. आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते
1: अगर बिल्कुल.
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो. लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे. और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए. कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है. इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे. वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था. बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी, जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है, तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते. और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब. और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त, लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने, उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
0: बहुत,
1: और
0: बहुत
1: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय,
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए है, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे,
0: एग्जैक्टली, और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखे, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे,

0: प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए है, महाराष्ट्र को दिए है। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: कलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे

0: फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं तो सवेरे लेट उठते हैं तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी, जी।

0: तो ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूं कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूं वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूं कि ये आजादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूं कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूंगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो जाएगी।

0: एवरीथिंग इज सेट.
1: पर मैं जब पुणे में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकिरा कुरोसावा की. और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए. मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म. ऐसा कुछ करना चाहिए. और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था. मैंने कहा हाँ करना था लेकिन अभी मुझे ये करना है. तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले. सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी. क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गया कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे. तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी. ओके
2: राइट.
1: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है. फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना. पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है. तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ.
2: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था. तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है. तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए.
1: थैंक यू सो मच. ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं. पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस.
2: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप
4: प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार.
5: नमस्कार. अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय. रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना क्षेत्र के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया. श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है. रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ. कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया. पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मतदाता केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए. कैंपों में गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया. खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देसी पिस्तल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है. रांची के मुराहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया. बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया. इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए. अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा. नमस्कार.
6: प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से. हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर. इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हो रहे हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को श्वेता श्रीवास्तव का नमस्कार, जोहार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य है देश के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल में कमी लाना है। बता दें, इस योजना का लक्ष्य लगभग 1 करोड़ घरों को लाभ पहुंचाना और पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना है। इस योजना के उद्देश्य हैं घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, बिजली के खर्च को कम करना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। इस योजना से बहुत सारा लाभ भी है लोगों को, जैसे कि बिजली बिल में बड़ी बचत, केंद्र सरकार द्वारा सोलर पैनल स्थापना पर सब्सिडी और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर आय की संभावना भी होती है, प्रदूषण में कमी और स्वच्छ पर्यावरण, लंबे समय तक कम लागत में बिजली की उपलब्धता। तो इतने सारे लाभ हैं इस योजना के। सुविधाएं की बात करें तो साथियों, इसमें ऑनलाइन कहते हैं आवेदन की सुविधा है। अधिकृत विक्रेता यानी कि वेंडर जो है के माध्यम से सोलर पैनल की स्थापना सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है। पात्र आवेदकों के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा भी है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता दें तो सबसे पहले आप आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करें, पीएम सूर्य घर पोर्टल, राज्य बिजली वितरण कंपनी और उपभोक्ता संख्या दर्ज करें, आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन जमा करें, स्वीकृति मिलने के बाद अधिकृत विक्रेता से सोलर पैनल लगवाएं, फिर निरीक्षण एवं नेट मीटर लगाने के बाद सब्सिडी आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। आम जनता के लिए कई उपयोगिताएं हैं, जैसे बिजली के बढ़ते खर्च से राहत है और स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों के लिए लाभकारी है ये, और ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक बचत का अवसर। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं इस योजना की। और अब चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस समय मिलकर सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना था। हम समझते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद आप सबों की दिन भर की जो शारीरिक और मानसिक थकावट है ना, वो दूर हो गई होगी। और अब चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता ली गई है शहरी आजीविका मिशन के संबंध में। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं यानी भेंटवार्ताकार हैं संतोष कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: अंत्योदय योजना के तहत चल रहे राष्ट्र

0: राष्ट्रीय सही आजीविका मिशन के केंद्र में, और आज हमारे साथ हैं उन्हीं के सचिव संतोष कुमार जी। तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो संतोष जी, सीधे तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सही आजीविका मिशन क्या है।
1: एक्चुअली ये जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है
0: जी,
1: ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने का एक कार्यक्रम है। जो 18 से 40 साल के जो लोग भी हैं इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं
0: जी। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें,
1: इस कार्यक्रम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है
0: जी।
1: जो ऐसे युवा जिनको जिन्होंने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई, जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है
0: जी,
1: उनको उनके जो च्वाइस है या उनका जो मेरे विचार है उसके अनुसार उनको उस प्रोग्राम में ट्रेनिंग देना,
0: प्रशिक्षण देना। उनके रुचि के अनुसार आप यहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं
1: जी।
0: तो मुख्यतः कहा जाए कि ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षण कौशल देने की बात आती है यहाँ पे
1: जी। जी,
0: तो ये बताइए संतोष जी कि यदि कोई युवा ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, यदि आपसे जुड़ना चाहे तो इसके लिए आपकी क्या पहल होती है?
1: देखिए, कोई भी ऐसे हुआ जिनको रोजगार या रोजगार करना है या स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें उनको जो ट्रेनिंग के लिए करने के लिए सबसे पहले एक हमारे ऑफिस में आना होगा और उनको एक फॉर्म भरना होगा
0: जी।
1: ऐसे किसी भी हुआ जो कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया हो, तो ऐसे हुआ भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं जिनके पास अपना आधार कार्ड हो।
0: हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि इसमें प्रशिक्षण का ही बात आता है, तो इसका संचालनकर्ता कौन होते हैं?
1: ये जो केंद्र सरकार है, ये इसके द्वारा, ये जो शहरी विकास मंत्रालय है इसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है
0: जी।
1: जो अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें कि झारखंड का भी इस बार जो प्रशिक्षण का जो हमारे यहाँ कोटा मिला हुआ है, ये करीबन 60,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ना है
0: जी।
1: तो वो कार्यक्रम जो है उसको देख रेख करने की जो संस्था होती है वो नगर निगम या नगर परिषद होता है
0: जी।
1: किसी भी शहर में
0: जी। तो हम सीधे यही जानना चाहेंगे कि इसमें प्रशिक्षण के तौर पर क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है इस केंद्र में?
1: देखिए, जो हमारा केंद्र है इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड ब्यूटिशियन, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का कोर्स चलाते हैं, साथ ही हम सिलाई कढ़ाई और कटिंग का कोर्स चलाते हैं, और साथ में बच्चों के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर का भी कोर्सेज के लिए रखा है, और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिसका मांग आजकल बहुत ज्यादा है, साथ ही सॉफ्ट स्किल यानी इंग्लिश स्पोकन, तो इस तरह के कोर्सेज बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण में देते हैं।
0: तो प्रशिक्षण के दौरान उन युवक युवतियों को आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं?
1: देखिए, जो भी प्रशिक्षण लेने वाले छात्र या छात्राएं हैं सभी को हम लोग एक किट देते हैं जो उनको जरूरत पड़ता है, और साथ में उसमें आपको बुक्स रहते हैं
0: जी,
1: जो और कॉपी रहते हैं, कलम रहते हैं, साथ में कुछ ऐसे चीज जो उसकी जरूरत हो वो हम सभी छात्र छात्राओं को अलग अलग से दे देते हैं।
0: निःशुल्क है सब?
1: ये सभी कुछ निःशुल्क है, कोई भी ट्रेनिंग में कोई पैसा आपको एक रुपया भी नहीं लगता है, और पूरा पूरा ट्रेनिंग फॉर्म भरने से लेके सारा ट्रेनिंग तक, सर्टिफिकेशन तक, सभी कुछ निःशुल्क है।
0: आप विकास कौशल की बात कर रहे हैं, तो आप ये एक मापदंड तो मापते ही होंगे कि हमारा जो विद्यार्थी है पूरा कौशल विकास में निपुण हो गया, इसके लिए आपके क्या मापदंड अपनाते हैं?
1: देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि किसी मतलब विद्यार्थी ने उस तरह का ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है, इसके लिए एक तो समय समय पे उनका टेस्ट भी लेते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोगों को भी हम लोग अपनी संस्था में बुलाते हैं, और साथ में प्रशिक्षण खत्म होने के बाद जो भारत सरकार की एक संस्था है RDAT, रीजनल डायरेक्टर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक असेसमेंट बड़ी है ठीक है ना, जो असेसमेंट इसका करती है, तो उसके द्वारा जो छात्र अगर पास कर जाते हैं उस असेसमेंट में तो उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि उन्होंने ये इस तरह का प्रशिक्षण लिया है, और चूंकि सारा काम भारत सरकार की NSQF नॉर्म्स उसके अनुसार उस मैंने तरीके का रहता है प्रशिक्षण, तो वो प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं उस स्तर का प्रशिक्षण लिया इसका पता आपको RDAT का सर्टिफिकेशन के द्वारा ही पता चल जाएगा।
0: यानी कि आप सर्टिफाइड करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वे कहीं और जाके भी अपने कुशल कारीगर के रूप में वो मान्यता प्राप्त हो
1: जी। ये जो संस्था है RDAT वो सर्टिफिकेशन देती है सभी को, जो भी पास जो छात्र कर जाते हैं उनको सर्टिफिकेशन देती है।
0: कहाँ कहाँ मान्यता मिलता है?
1: कहीं पर भी, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
0: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तरीका भी जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या आप क्या क्या गौर करने वाली बात होती है, तो वो भी हमारे श्रोता युवा श्रोता सुन लें।
1: सफर अगर ये ग्रुप बन के काम करते हैं, संख्या में 4-5 या 7 लोग जैसे जुड़ जाते हैं, समूह में 10 लाख लोग तक का लोन उनको मिल जाता है। किसी बैंक से आप ले सकते हैं, एक आपको फॉर्म मिलता है जिसको ACP फॉर्म बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर्म,
0: वो कहाँ मिलेगा?
1: वो आपको नगर निगम में, कहीं भी नगर निगम में मिल जाएगा।

0: उसको भर के आपको देना पड़ता है, नगर निगम आपको बैंक से लिंक करा देगा।
1: तो आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई युवा आपसे जुड़ना चाहे, इस प्रशिक्षण केंद्र में आना चाहे, तो उसके लिए उन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, अर्हता क्या होंगी, क्या क्या पात्रता उन्हें देनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए?
0: देखिए, पहले सबसे पहले जो छात्र या छात्राएं पढ़ना चाहते हैं उन 18 से 40 जो के वर्ग के उम्र के बीच रहने चाहिए वो जी। साथ में अगर उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया हो तब भी उससे इसमें कोई एडमिशन में असर नहीं पड़ता।
1: साक्षर होना चाहिए,
0: बस साक्षर होना चाहिए
1: जी।
0: साथ में आधार कार्ड एक होनी चाहिए
1: जी।
0: और कोई भी चीज उसमें जरूरत नहीं है। और बाकी
1: यहाँ आवे फॉर्म आप उसको भरवा के और आप एडमिशन ले सकते हैं
0: जी, जी, जी।
1: तो एडमिशन लेने से मैं आप कुछ बातों का ध्यान भी देते हैं कि किन विद्यार्थियों को लेना है या किन विद्यार्थियों को नहीं लेना है।
0: देखिए, सबसे पहला जो प्रशिक्षण में सबसे मुख्य वही काम है कि किस छात्र को प्रशिक्षण देना है। जैसे ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है
1: जी,
0: वो छात्र कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वही चीज को ध्यान देते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया हो, जो घर में बेरोजगार है, तो ऐसे छात्र को जो उनको जरूरत लगता है, रुचि है, उस रुचि में उनको एडमिशन देके उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं।
1: तो संतोष जी, आपसे तो बहुत सारी जानकारी ले ली है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चल रहे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। तो आगे अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी केंद्र के जो आपके जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ बातचीत कर लें आपसे। तो अभी आपके पास कितने विद्यार्थी अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं?
0: अभी हम लोग जो 8 बैच में करीबन 320 विद्यार्थी यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं।
1: यदि कोई नया विद्यार्थी आना चाहे तो उसका टाइमिंग क्या है आपके पास, समय क्या है वो बताएं?
0: हम लोग का जो क्लासेस है जो हम लोग चलता है प्रशिक्षण, ये 9 से लेके 5 तक चलता है।
1: हाँ।
0: दो बैच में चलता है, जैसे 9 बजे से 1 बजे तक एक कार्यक्रम चलता है और 1 बजे से लेके 5 बजे तक का दो मैंने शेड्यूल में वर्क काम चलता है।
1: तो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं और उसके बाद यदि आपसे जुड़ना चाहें तो हम आपसे पता भी जानना चाहेंगे।
0: ये जैसे भी हम लोग का जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र का पता है, प्रशिक्षण केंद्र है ये बंसीलाल चौक के 10 कदम की दूरी पर है अवस्थित है। जो भी छात्र अगर एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं।
1: संतोष जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ के बहुत सारी जानकारियों पर आपने रोशनी डाली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सचिव संतोष कुमार की बातचीत। तो अब आपको सुनवाते हैं, एक छात्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो जी आपका परिचय क्या है?
2: मेरा नाम फरत साहिन है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एम्ब्रॉयडरी सीखने आते हैं हम, सरदार चौक से आते हैं और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा सिखाया जाता है।
1: तो फरहत साहिन जी, हम आपसे ये जानना चाहें कि यहाँ पे आप किस ट्रेड का प्रशिक्षण ले रही हैं?
2: हम सिलाई और एम्ब्रॉयडरी दोनों का ले रहे हैं। मेरा ट्रेड है एम्ब्रॉयडरी और सिलाई दोनों, जो 8 महीना का कोर्स है उसको। तो हम 9 बजे से आते हैं, 9 बजे से हम 1 बजे तक यहाँ रहते हैं, क्लास करके जाते हैं। बहुत ही अच्छा सिखाया जाता है। अभी मेरा 2-3 महीना लगभग हो गया है, लेकिन हम 2-3 महीना के हिसाब से बहुत ज्यादा सीख गए हैं।
1: और अब क्या सिखाया जाता है यहाँ इस ट्रेड के अंदर?
2: ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है मोती स्टिच, चेन स्टिच और साटन स्टिच, एप्लीक, बहुत सारा है। इसमें लगभग 40-50 स्टिच आते हैं, इसमें हम लोग लगभग 18-20 पार ही कर गए हैं अभी तक, बहुत कुछ बना भी लिए हैं। और हम आशा करते हैं, हम इतना अच्छा सीख रहे हैं कि हम यहाँ से सीखने के बाद किसी को सिखा सकते हैं, अपना खुद का सेंटर खोल सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे माँ बाप को भी यही उम्मीद है, जहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए मेरे माँ बाप भी एकदम हमको भेजते हैं सीखने। घर का काम छोड़ के पहले जाओ सीखो, ट्रेनिंग लो, उसके बाद कुछ करना, हम आगे जाके कुछ कर सके, अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके कुछ बन सके, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे और ट्रेनिंग करते हैं।
1: आपके जीवन में प्रशिक्षण का क्या महत्व रहा?
2: हम पहले ग्रेजुएशन करके घर में ऐसे ही बैठे हुए थे, हमको पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हमको लगा कि वहाँ जाके पता करना चाहिए, हम यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, लगा कि घर में बोर हो रहे थे, कुछ सीखेंगे, दूसरे को सिखाएंगे, इसका बहुत महत्व है अपने जिंदगी में, और ये चीज हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं। जब भी बहन हमारी घर में बैठी हुई है, उनको चाहिए कि हम कहीं जाए, सीखे, देखे और खुद करे और दूसरे को भी इसके बारे में जानकारी दे, बहुत अच्छा चीज है, जिंदगी भर लाइफ में हमेशा काम आता रहता है। ये एक हुनर है जो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं, सिखा सकते हैं, इससे दो पैसा कमा सकते हैं। जो कुछ कर नहीं सकता, जिसका जो बेरोजगार है, तो वो अपना दो पैसा कमा सकता है, अपना घर चला सकता है।
1: इसके साथ एक और छात्रा है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है।
3: मेरा नाम सबा आफरीन है। मैं यहाँ कंप्यूटर क्लास के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर सीख रही हूँ। यहाँ पे अभी काफी

0: महीना से मैं यहाँ क्लास कर रही हूँ, जिसमें अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत अच्छा से सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं।
1: तो इसमें आप क्या क्या सीखे हैं?
0: सर अभी तो हम लोग जितना भी ऑफिस में जो भी यूज होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर आजकल के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बारे में सर ने हम लोग को काफी डीपली नॉलेज दिया है, कैसे फाइल मतलब रिजल्ट तैयार होता है, स्कूल लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं इसमें।
1: तो क्या लगता है कि लड़कियां हैं उनको आगे आना चाहिए इस प्रशिक्षण में?
0: यस सर,
1: आपका क्या अनुभव?
0: मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा अभी तक का कंप्यूटर में, क्योंकि हर फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑफिस के लिए जाए या बैंकिंग के लिए कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के लिए आए हैं।
1: इसके साथ ही एक और छात्रा है तो उनसे हम बात करते हैं।
2: मैं शिवानी कुमारी कुमाटोली पांडाला में रहती हूँ। मैं अभी यहाँ पे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मैं यहाँ पे कुछ सीख रही हूँ। मुझे सीखने का बहुत ज्यादा ही शौक था, यहाँ पे मैं ब्यूटिशियन और एम्ब्रॉयडरी सीख रही हूँ।
1: तो आज के दौर में जहाँ सुंदरता का दौर चलता है, वहाँ पर ब्यूटिशियन कितना कारगर है महिलाओं के लिए?
2: ब्यूटिशियन बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है मेरी जिंदगी में। मेरा सपना था मैं अपना खुद का ब्यूटिशियन खोल सकूं, कहीं से सीख सकूं, यहाँ के तहत मुझे बहुत अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ की मैडम लोग बहुत अच्छी है, सर लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सब अच्छे से सिखाते हैं। मैं ब्यूटिशियन क्लास में बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है।
1: तो यहाँ के जो ग्रामीण और जो शहरी जो लड़कियाँ हैं पढ़ने के बाद भी घर पे रहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं वो सबको सीखे, यहाँ बहुत अच्छा सिखाया जाता है। यहाँ पे ब्यूटिशियन भी बहुत अच्छा और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैं ब्यूटिशियन भी सब कुछ सीखती हूँ यहाँ पे।
1: तो इस केंद्र में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं?
2: मेरे को इस केंद्र में हर चीज की सुविधाएं मिलती है। हाँ, ये पूरा निशुल्क है, यहाँ पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं लगता है।
1: तो ब्यूटिशियन का कोर्स में जो भी खर्च होती है तो वो कौन वहन करता है?
2: सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, यहाँ पे सर लोग सब लोग सर लोग हम लोग को देते हैं यहाँ पे सिखाने के लिए, सीखने के लिए।
1: तो इसके साथ एक और छात्रा है तो उनसे भी बातचीत करते हैं।
3: जी, मैं नफीस फातिमा हूँ, मैं खिरगांव से आती हूँ। मैं ब्यूटिशियन और एम्ब्रॉयडरी का ट्रेनिंग ले रही हूँ यहाँ पे।
1: तो जानते हैं यहाँ एक और छात्रा है, उनका भी अनुभव सुनते हैं। जी, आपका नाम?
4: जी, मेरा नाम हिना कौसर है, मैं सरदार चौक से आती हूँ। यहाँ पे मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी करती हूँ और कढ़ाई भी करती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा से सिखाया जा रहा है। मैं बहुत यहाँ से बहुत प्रसन्न हूँ, यहाँ पे आने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है। घर वाले भी मेरे बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है, कुछ कर लेना चाहिए। और आजकल का दौर जैसा है, जैसा कि सारी लड़कियों को मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सेल्फ
5: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, शहरी आजीविका मिशन पर ली गई थी। जानकारी दे रहे थे संतोष कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। और अब चलते चलते नीचे सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

नया संकल्प नई पहल। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में समय शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा तरंग।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बंधू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: हर घर की वाणी, आकाशवाणी।

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को श्वेता श्रीवास्तव का नमस्कार, जोहार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और इस समय अपना कार्यक्रम बड़े प्यार से सुन रहे होंगे। दोस्तों, बातें करते हैं आज हम भारत कौशल भारत मिशन के संबंध में। तो दोस्तों, कौशल भारत मिशन का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। यह मिशन युवाओं की प्रतिभा को निखार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कौशल ही सफलता की कुंजी है। प्रशिक्षित युवा न केवल बेहतर रोजगार प्राप्त करते हैं बल्कि उद्यमी बनकर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसलिए कौशल भारत मिशन विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप युवा भी जो है ना, अपनी रुचि के अनुसार जरूर प्रशिक्षण ले और आत्मनिर्भर बने। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बातें और भी होंगी, लेकिन पहले सुनते हैं मिलकर ये खूबसूरत सा गाना।

दोस्तों, इस गाने से पहले हम लोग बातें कर रहे थे और चलिए फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज 12 जुलाई है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के जीवन में आशा, सकारात्मकता, सोच और बेहतर भविष्य के लिए निर्माण के लिए इसका संदेश देता है। युवाओं के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज के युवा ही कल के समाज और राष्ट्र के निर्माता हैं। दोस्तों, आशा वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। यदि युवाओं में मन में आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच होगी तो वे शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, तकनीक, खेल, उद्यमिता और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं का भविष्य केवल उनके सपनों पर ही नहीं बल्कि उनके परिश्रम, अनुशासन, कौशल और निरंतर सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार, समाज और परिवार का दायित्व है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार युवा ही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। इसलिए प्रत्येक युवा को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए समाज और देश के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस हमें यह संदेश देता है कि आशा ही उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। आइए हम युवाओं में आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करें ताकि एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में वो अपना योगदान दे सके। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

और अब इस गाने के बाद हम आपको सुनवा रहे एक भेंट वार्ता, आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है और आजकल ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है, इस विषय पर इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं साहिल राज जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं विश्वनाथ सोनी।

0: आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमें मौजूद है सैलराज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने पढ़ाई की हुई है और इनसे हम आज जानेंगे कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है और आजकल ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है, इन सब तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सैलराज जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: जैसा कि हम देखते हैं आजकल आकाशीय बिजली का बहुत हम लोग देखते हैं, तो लोगों के मन में बहुत ही कौतूहल होता है कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है, तो इस संदर्भ में आप हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है।
1: आकाशीय बिजली से बात करने के पहले को बताना चाहूंगा बिजली के सबसे छोटे इकाई के बारे में। प्रतिदिन के कार्यों में आप देखते होंगे कि जब भी आप कंघी करते हैं, कंघी का जब भी घर्षण होता है बालों या कपड़ों के साथ भी, तो आप पाएंगे कि कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कंघी का घर्षण होता है बालों के साथ, कपड़ों के साथ, तो कंघी में मौजूद पार्टिकल, अगर और स्पेसिफिक बोला जाए तो कंघी के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कंघी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन कपड़ों में या बालों में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंघी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज कहने का मतलब ये है कि जब भी दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो इस दरमियान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ऐसा माना जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज होता है।
0: कभी कभी हम देखते हैं जब कंघी करते हैं तो और उसके बाद जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को सटाते हैं तो वो अपने आकर्षित करने लगता
1: है। जी जी, क्योंकि उस समय जो कंघी होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कागज न्यूट्रल बैठे हैं उसको वो अपनी ओर खींचने में सक्षम हो जाता है। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है, इसको बहुत बड़े स्तर पे हम लोग लाइटनिंग के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे तो कंघी का घर्षण होता है बालों के साथ और कपड़ों के साथ या जो भी है, वहां पे मेघों में क्या होता है जो घर्षण होता है, जो ये उत्पन्न होती है वो हम समझते हैं। तो जो हमारे मेघ हैं वो जलवाष्प के छोटे छोटे कणों से बनते हैं। मेघों में छोटे छोटे जलवाष्प के कणों के साथ साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिसमें निरंतर निरंतर घर्षण की क्रिया होती रहती है, और घर्षण होती है तो जो पार्टिकल हैं, जो जलवाष्प के छोटे छोटे कण हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज होते रहते हैं। तो इस दरमियान क्या होता है कि जो भी जलवाष्प के कण पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका वजन कम हो जाता है। अब वजन कम कैसे होता है, क्योंकि देखिए वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज किए हैं, तो अपने

0: लाइटनिंग या बिजली चमकने के रूप में ऑब्जर्व करते हैं धरती पे, क्योंकि धरती एक जीरो पोटेंशियल का केंद्र है, बहुत बड़ा सिंक है, तो वो धरती अपनी तरफ अब खींचती है और हम लोग आकाशीय बिजली का अनुभव करते हैं।
1: कभी कभी हम देखते हैं कि काफी गर्जना के साथ बिजली उत्पन्न होती है, ये किस तरह से होता है?
0: जी, मैंने बताया कि दोनों के बीच में आकर्षण होता है, तो वो जब आकर्षण होता है और जो तीव्र वेग से, ये जो तीव्र वेग होता है, ये इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये करीब चंद सेकंड में ही 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर अटेन कर लेता है और करीब मिलियंस ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जब मिलियंस ऑफ वोल्ट जब प्रोड्यूस करते हैं तो आसपास का जो हवा होता है वो लो वायु दाब, लो प्रेशर क्रिएट करता है और उसी को फिलअप करने के लिए जब बाहर से हवा उसकी ओर बढ़ती है तो यही एक सुपरसोनिक रीजन क्रिएट करता है और यही सुपरसोनिक वॉइस हम लोगों को सुनाई देता है, यही तेज गर्जना होती है लो प्रेशर के कारण।
1: आजकल हम ये देखते हैं कि काफ़ी जो है बिजली जो गिरने की घटनाएं हम आमतौर पर देखते हैं, इससे काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, तो ये आजकल क्यों इस तरह से संभावनाएं बढ़ रही है आजकल?
0: जी देखिए, बिजली गिरने की घटनाएं तो बहुत पहले से चली आ रही है, हाँ, लेकिन आजकल ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है। इसका सबसे पहले तो जानते हैं कि बिजली जो बनती है, वज्रपात जो होता है, उसका कारण क्या है, तो उसके अनुकूल क्या परिस्थितियाँ हैं। तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, गर्म और नमी युक्त तापमान जब जब वातावरण बनता है, तो ये सबसे अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है वज्रपात के लिए। तो ये तो हो गया सीधा कारण, लेकिन आजकल ये जो अनुकूल स्थिति उसके लिए बन रही है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। क्या होता है, वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो गर्म हो रहा है, हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है, और साथ के साथ वायु प्रदूषित करने वाली जो कुछ गैसें हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड SO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मेघों में जा करके जो घर्षण की प्रक्रिया चल रही है उसको और तेज कर देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी दो पार्टिकल में जब और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है तो और फ्रिक्शन बढ़ जाता है। सड़क भी है, सड़क अगर पूरा प्लेन है, साफ है, तो उसमें कम फ्रिक्शन होता है, लेकिन अगर उसमें खुरदरापन आ जाएगा, कंकड़ पत्थर डाल देंगे तो और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से मेघों में कंकड़ पत्थर का ही काम कर रही है, सब जो गैसेस हैं, और फ्रिक्शन की प्रक्रिया को और बहुत बढ़ाया है। अब फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और फिर बिजली वज्रपात की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है।
1: यानी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का कहां भी अहम स्थान है, जिसके कारण से ये घटनाएं दिन ब दिन हम लोग देखते हैं कि बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन घटनाओं को रोकना हो तो कैसे रोका जाए, इन घटनाओं को कैसे कम किया जाए, और अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, इन घटनाओं को रोकना तो खैर नामुमकिन है, ये घटनाएं पहले भी होती थी, अभी भी होती है, आगे भी होती रहेंगी, और वर्षा तो आवश्यक है हमारी, तो वर्षा के साथ साथ ये तो होगा ही। हाँ, कम किया जा सकता है, सावधानी बरती जा सकती है, कम कर सकते हैं वायु प्रदूषण को, जो मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रदूष ये करके, इलेक्ट्रिक व्हीकलों का इस्तेमाल करके, और फैक्ट्री से जो हवा जो वायु प्रदूषित दूषित हवाएं जो निकलती है उसको, उसकी रोकथाम करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमारे हर राज्यों के जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो पहले से ही सूचित कर देती हैं ऐसी घटनाएं अगर होने वाली होती हैं, तो आप सुनिश्चित कर लें खुद को कि उस वक्त आप घर पे रहें, अपने मकान में रहें, ये तो सबसे अच्छी स्थिति है। हाँ, लेकिन मकान में भी हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितने भी आपके घर में उपकरण हैं उसको आप बंद कर दें, TV, टेलीफोन खास करके, और भी चीज़ें, लोहे के पाइप जो घर में लगे होते हैं उससे आप दूरी बना लें, लोहे के बेसिन जो भी धातु के बने, लोहे नहीं, कोई भी धातु के बने अगर पाइप है, बेसिन है, तो आप उससे दूर रहें, ये तो आप घर पर रखें सबसे सुरक्षित है और सबसे बढ़िया है जगह है। अगर आप बाहर हैं तो आप सुनिश्चित करें सबसे पहले कि आप किसी ऊंचे जगह पर नहीं है, या फिर अगर आप आश्रय ले रहे हैं तो किसी पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं, या किसी बड़े बिल्डिंग के नीचे भी बिल्कुल नहीं लेना है आपको आश्रय। आप आश्रय ले सकते हैं मकान के अंदर ही, घर के अंदर, और समूह में नहीं खड़ा रहना है आपको, आपको थोड़ी दूरी बना करके अलग अलग खड़ा रहे तो ज्यादा बेहतर है।
1: बिजली कड़कने की घटनाओं के समय लोग अक्सर रास्ते में भी होते हैं, अपने फोर व्हीलर कार्स में होते हैं, तो क्या
0: अगर वो सफर कर रहे हैं तो अगर उनका जो उनका वाहन है उसका छत जो है वो एक मजबूत छत है तो वाहन तो कोई तकलीफ नहीं, आप वाहन में सफर को अपनी जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर खुले छत का वाहन है आपका तो आप फौरन अपने वाहन को रोके और सुनिश्चित करें कि आप किसी मकान के अंदर अपने आप को पनाह दे चुके हैं, क्योंकि खुले वाहन में सफर कर रहे हैं, गाड़ी या फिर आजकल गाड़ी फोर व्हीलर भी होती है जो खुले छत की होती है, तो वो बिल्कुल असुरक्षित है।
1: अक्सर गाड़ियां भी होती है तो लोहे की बनी

0: होती है तो क्या कितनी संभावना होती है उसमें?
1: लोहे की बनी गाड़ियां बिल्कुल सुरक्षित है अगर वो ऊपर से ढकी है, मजबूत छत वाली अगर लोहे की गाड़ी है तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर खुले छत वाली है तो खतरे का आमंत्रण है बिल्कुल।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी को आपने हमारे श्रोताओं को बताया, तो और क्या आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे?
1: जी देखिए, अगर आप खुले मैदान में हैं बिल्कुल और आपको अचानक से वज्रपात की स्थिति बन रही है, वज्रपात हो रहे हैं और आप अचानक से महसूस करते हैं कि आपके सर के बाल बिल्कुल खड़े होने लगे हैं, आपके त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हो रही है, जी बिल्कुल, तो आपको फौरन लेट जाना है और अपने कान को बंद कर लेना है, क्योंकि ये सूचक है इस बात का कि कुछ क्षण में आपके आसपास बिजली गिरने वाली है, तो आप फौरन लेट जाएं और अपने कानों को जोर से बंद कर लें, उस वक्त के लिए सबसे सही उपाय यही हो सकता है।
0: अच्छा, मान लीजिए अगर कोई खुले खेत पे है काम कर रहा है तो उस दौरान क्या करना चाहिए?
1: अगर ये महसूस होता है जो मैंने बताया, बाल के खड़ा होना, रोंगटों का खड़ा होना, तो आप फौरन लेट जाएं और
0: एक अलार्म है आपके लिए,
1: ये बिल्कुल अलार्म, क्योंकि ये जो घटना होती है वो तीन फेज में होती है। पहला फेज, दो फेज तो हम लोग जानते हैं, ये बिजली चमकता है, आवाज करता है, ये तो दो फेज हो गया। तीसरा होता है आवेश, वो वही आवेश जब ये बिजली गिरने वाली होती है तो उसके पहले एक आवेश का अनुभव होता है, वही आवेश आपके रोंगटों को खड़ा कर देता है, आपके बालों को खड़ा कर देगा, आपको आपके त्वचा में बिल्कुल कपकपी सी मच जाएगी और इसके ठीक बाद फिर कुछ ही क्षण में बिजली गिरती है। तो ये महसूस करके अगर आपको महसूस होता है तो आप फौरन लेट जाएं और अपने कानों को जोर से बंद कर लें, और इस तरह से आपका क्षति कम होगी, क्षति तो होगी क्योंकि आपके आसपास बिजली गिरी लेकिन बहुत कम क्षति होगी।
0: बिल्कुल, तो आपने अच्छी जानकारी आपने बताया कि आकाशीय बिजली से कैसे निपटना और इसे कैसे कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने बताया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे काफी लाभान्वित होंगे और ऐसी घटनाओं से भी अपने आप को सेफ रखेंगे, बचा कर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
2: आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है और आजकल ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है, इस विषय से संबंधित ली गई भेंटवार्ता भी आप सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे साहिल राज और इनसे बातचीत कर रहे थे विश्वनाथ सोनी। और अब लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन जेकेए इंडिया झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक मुख्य समाचार भी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में समय शाम के 6:02:40 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्रमिकों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश।

हम आकाशवाणी के हवाई बांग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:03 और 22 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेहनत कश का।

0: कार्यक्रम मेहनत का सुन रहे तमाम श्रमिक भाई बहनों व दीगर श्रोताओं का स्वागत है। खैर मकदम है आप ही के इस कार्यक्रम में। आधे घंटे के इस दिलचस्प जानकारियों व संगीत में कार्यक्रम में आज आपके साथ पहली शब्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। कई श्रमिक भाइयों कैसे हैं आप सब? हम समझते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और इस वक्त अपने पसंदीदा कार्यक्रम मेहनतकश का आनंद ले रहे होंगे। श्रमिक भाइयों, आज हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू करवाएंगे एक खास विषय पर, वो ये कि क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। लेकिन फिलहाल रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत, और गीत से पहले ये जरूरी संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: शरण भाइयों, आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। तो शरण भाइयों, पहले ये जान लें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों व दस्तकारों को आर्थिक व माली मदद, मुफ्त यानी मुफ्त प्रशिक्षण, स्टाइपेंड, टूल किट, प्रोत्साहन, 15,000 रुपये और 5% की रियायती दर पर 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का लोन प्रदान करती है। चलो भाइयों, इस योजना के लाभ के रूप में जरूरतमंदों को मुफ्त प्रशिक्षण और भत्ता, टूल किट की वाउचर, सस्ता लोन के साथ अन्य कई लाभ प्राप्त होते हैं। बतौर मुफ्त प्रशिक्षण और भत्ता, कारीगरों को कौशल उन्नयन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके दौरान हर दिन 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। साथ ही बिना किसी गारंटी के 2 चरणों में 3 लाख रुपये तक लोन, पहले चरण में 1 लाख रुपये और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये मात्र 5% की वार्षिक ब्याज पर मिलता है। अन्य लाभों में विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और डिजिटल लेन देन पर इंसेंटिव की सुविधा भी मिलती है। दोस्तों और श्रमिक भाइयों, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया पर, लेकिन फिलहाल रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता अग्निशामक यंत्रों से जान माल की सुरक्षा के उपाय। इस बारे में बता रहे हैं सोहराब खान और उनसे बातें की हैं प्रवेंद्र कुमार मिश्रा ने। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
2: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकारी, गैर सरकारी और निजी भवनों में लगाया गया अग्निशामक यंत्र सुरक्षा की दृष्टि से काफी जरूरी है, और यह क्या चीज है, यह कैसे काम करती है, इन सभी सवालों के जवाब हेतु आज हम बातचीत करते हैं मोहम्मद सोहराब खान जी से, और ये बताएंगे कि ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले सोहराब खान जी, आपको हमारा और हमारे आकाशवाणी की तरफ से नमस्कार, आदाब।
3: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
2: हाँ, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप जो है अग्निशामक यंत्र के रखरखाव के बारे में आप बहुत सारी जानकारी आपके पास है, और आप लोगों को जागरूक भी करते हैं, और आपका एक दुकान भी यहाँ पर इंदौरपुरी से थोड़ा आगे
3: पगमल रोड में जो विशाल मेगा मार्ट है, अच्छा, उससे जस्ट आगे में राइट हैंड साइड में।
2: तो आप जो है सो इस के बारे में आप ये बताए कि आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिया, अभी तक आप कहाँ कहाँ तक क्या पढ़ाई की है, इसके बारे में।
3: हमारा जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, उसके बाद जस्ट हमने अच्छे परसेंटेज नहीं आने के कारण मैं नेट और आगे पढ़ाई चालू नहीं रख सका, तो हमने एक अलग सेक्टर जो कि फायर से रिलेटेड था, सेफ्टी से रिलेटेड था, उसका एक कोर्स किया जो कि जमशेदपुर में न्यू यूनिशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उससे हमने डिप्लोमा का कोर्स किया फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का, और गुजरात से फिर मैंने एक एडिशनल कोर्स किया डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। छोटी छोटी जो भी डिग्रियां होती है उससे हमने अपने आप को अपडेट किया।
2: सोहराब खान जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो इसके जो तकनीकी पहलू हैं और इसके साथ साथ जो व्यवहारिक पहलू हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, तो आपके हिसाब से या तकनीकी जानकारी के हिसाब से आग के कितने प्रकार होते हैं?
3: देखिए, आग के प्रकार के जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि आग होता कैसे है, लगता कैसे है। आग अचानक नहीं लगता है, उसके लिए मिनिमम 3 चीज का होना जरूरी है। सबसे पहले ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ में कोई ईंधन, आग को जलने के लिए कोई फ्यूल या कोई ईंधन का होना जरूरी है। ये 2 चीज होने के बाद तीसरा चीज आता है हीट का, यानी कोई गर्मी का। अगर वो 3 चीज जब तक एक साथ नहीं रहता तब तक आग लगेगा ही नहीं, और ये तीनों चीज का एक चेन है जिसको फायर ट्रायंगल हम लोग कहते हैं। इसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों चीज आता है।

0: अगर कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हम लोगों को उसका हीट को रिमूव करना पड़ता
1: अच्छा, तो उसको कैसे करते हैं?
0: है। उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से करते हैं और देखते हैं कि क्या अगर कोई बंद कमरे में आग लगी है तो उसका एग्जॉस्ट उसका विंडो खोल करके हम लोग उसके हीट को पैकिंग जो रहता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है उसका फ्यूल को रिमूव करना। अगर जहाँ आग लगी हुई है और वो छोटा सामान कोई रखा हुआ है और उस कमरे में या उस ऑफिस में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ तो कोशिश करते हैं कि जिसमें और आग लग सकता है तो ये कॉमन सी चीज़ हर घर में अगर कहीं भी आग लगता है तो घर वाले जो आग लगा हुआ उसको तो नहीं बचाते हैं, पहले जो नहीं लगा उसको उठा के ले आते हैं। उसका दो सेंस है कि उनकी जो बेशकीमती सामान है वो बच जाए और दूसरा आग और ना लगे उसके लिए कोई सामान ही ना बचे, तो ये दो चीज़ बचती है। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन को हटाना। ब्रह्मांड पूरे ऑक्सीजन भरा हुआ है लेकिन उसको हटाने का कोई माध्यम नहीं है,
1: जी,
0: हम लोग यही
1: हमारा
0: जानते
1: तो
0: हैं।
1: 2/3 जो है पृथ्वी वो पानी भरा हुआ और बाकी ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तो
0: जी
1: बहुत आया था।
0: तो उसको हटाने के लिए ही जो स्रोत का यूज होता है उसको हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है। जो मैक्सिमम ऑफिसेज कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंपलसरी है कि इसको रखना ही रखना है,
1: जी
0: जो हमारे जान माल दोनों का सुरक्षा प्रदान
1: सुरक्षा
0: करती है।
1: होती
0: दूसरा चीज आता है कि इसका क्यों जरूरत पड़ता है फायर एक्सटिंग्विशर का। तो सबसे पहले हम लोगों को कितने तरह का फायर होता है उसको जानना जरूरी है और किस फायर को किस आग को किस एक्सटिंग्विशर से किस अग्निशामक यंत्र से बुझाने के रूप में आता है उसको जानना जरूरी है और कैसे हम एक अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करें ये जानना जरूरी है। और इसका रख रखाव सबसे बड़ा है, इसका रख रखाव कि किस तरह से हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को रख रखाव करें कि ये लंबे समय तक सर्विस दे सके, अपना योगदान दे सके। और मेन जब समय जब काम करता है जब जरूरत पड़ता है इसका, उस जरूरत में ये काम ही अगर ना आए तो वो कैसे हम कहेंगे ये अग्निशामक यंत्र का हम लोग इस्तेमाल कर पाए।
1: तो यहाँ दो बातें हुई कि अग्नि के प्रकार के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो बीमारी के हिसाब से दवा देते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: क्या
0: जी
1: उसी तरह से है कुछ कि अग्नि किस प्रकार से जली हो और उसमें हम उस तरह के फायर
0: जी हाँ
1: एक्सटिंग्विशर
0: जी
1: को
0: हाँ
1: हम यूज
0: जी हाँ
1: करें?
0: एकदम आप सही फरमा रहे हैं। जितने तरह पहले हम क्लास ऑफ फायर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले कि जो अग्निशामक यंत्र है उसका इस्तेमाल कोशिश करें कि वैसा नौबत ही ना आए कि हमको उसको इस्तेमाल करना पड़े।
1: जी, ये तो सबसे पहले
0: सबसे पहला चीज़
1: एहतियात जो बरतते हैं।
0: एहतियात जो हम लोग बरतते हैं, क्योंकि एक छोटा सा फैमिली है, आज के टाइम में हर घर में एक गैस मिलेगा ही, स्टोव हीटर ये सब जनरल यूज की चीजें हैं वो हर घर में रहता ही है। तो घर के जो भी लेडीज हैं या जो भी जेंट्स हैं, आजकल हॉस्टल में लड़के लोग कोई भी खाना बनाने के लिए वो सब सामान रखते हैं जो अत्यंत ही ज्वलनशील रहती है और उससे भी आग लगने का संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ है कि हम लोग प्रिवेंट करें उस चीज़ को
1: जी
0: कि कैसे उससे बचा जाए। हो जाने के बाद तो क्योर कोई भी कर सकता है,
1: जी
0: उसके बहुत सारे मेथड हैं बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन हम लोगों को अगर आग से बचना है तो सबसे पहले गुड हाउसकीपिंग का कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि जहाँ हमने ज्वलनशील पदार्थ रखा है वहीं हम कोई चलती हुई मोटर रखे या फिर माचिस या जलाने का कोई सामान ज्वलनशील पदार्थ भी रख दी हो कि दोनों इन फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा होता है
1: जी
0: कि आग लगा तो वो दोनों एक दूसरे का साथ दे
1: जी जैसे कहा
0: करके।
1: जाता है कि आग के बगल में बारूद नहीं रखना
0: जी
1: चाहिए,
0: जी वही है
1: या कोई हीट है उसके बगल में हम माचिस ना रखें,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: ये तो हो गया कि मुसीबत को बुलावा अगर हम
0: बुलावा
1: देते हैं
0: देने
1: तो
0: वाले में। हाँ।
1: फिर हम उससे फिर कैसे बचेंगे?
0: तो अब गुड हाउसकीपिंग के कंसेप्ट के बाद जस्ट दूसरा चीज था आज के टाइम में जो कि बहुत ही बुरी चीज है, धूम्रपान। जो जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको तो नुकसान होता ही, पास में बगल वालों को भी नुकसान होता है जो उनके आसपास में रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका ये एक आदत सी बन गई है और जो कॉरपोरेट में वो लोग काम कर रहे हैं तो एक अच्छा चीज ये किया गया है कि उनके लिए एक अलग से प्लेस दे दिया जाता है।
1: अच्छा, ये हो गया कि अभी आप बताए कि जैसे अगर हम गुड हाउस कीपिंग करते हैं, अगर सही सामान को सही जगह पर रखते हैं तो आग लगने की संभावना कम हो जाती है।

0: है, लेकिन आग के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से आग में हम किस तरह के अग्नि सामग्री यंत्र का हम प्रयोग करेंगे?
1: देखिए, अभी जो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग में फायर को 5 भागों में बांटा गया है,
0: जी
1: क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी एंड क्लास के।
0: जी
1: क्लास ए फायर में हम लोग कपड़ा, लकड़ी, पेपर, रबर इत्यादि से, प्लास्टिक इत्यादि से जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास ए फायर में
0: जी
1: रखते हैं। और इसका जो फायर एजेंट है वो है पानी। ऐसा नहीं है कि अगर ये इन चीज़ों पे अगर आग लगती है तो आप काफ़ी कॉस्टली मटेरियल आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फॉर्म टाइप गैस, वो काफ़ी महंगा आता है। तो
0: दूसरा क्या है?
1: इस चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल ना करें, पानी हम इजली हम इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है क्लास बी फायर, जो कि मोटर गैसोलीन और अल्कोहल टाइप का फायर होता है, जो इन ईंधन के द्वारा आग लगता है उसको हम लोग क्लास बी फायर में रखते हैं। इसको हम लोग ड्राई केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। तीसरा आता है क्लास सी फायर, जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगता है। इसको कभी भी हम लोग फायर को, इस तरह का फायर को हम लोग पानी से ना बुझाएं, क्योंकि इसको ग्राउंड कंडक्ट मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए स्पेशली ड्राई केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है।
0: जी
1: चौथा आता है क्लास डी फायर, जो कि सोडियम और पोटाशियम मैग्नीशियम का से बना फायर को कहते हैं। और पांचवा और अंतिम जो है क्लास के फायर होता है, जो कि किचन और किचन के जो ग्रीस और ऑयल से जो आग लगती है उसको क्लास के फायर में रखते हैं।
0: जी तो अब हम किसी भी अग्निशामक यंत्र को हम उसको जो इस्तेमाल करते हैं उसका पद्धति क्या है उसका?
1: पहला
0: ये कितने प्रकार के होते हैं?
1: अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने से पहले हम ये बात करेंगे ये कितने तरह का होता है।
0: जी
1: ये टोटल 2 तरह का होता है, एक फिक्स्ड इसका इंस्टॉलेशन होता है और दूसरा पोर्टेबल होता है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, सिनेमा घरों में और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वगैरह में। ये कंपलसरी है कि आपको इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना ही चाहिए। और आए दिनों में भी जितने मॉड्यूलर्स हैं वो लोग तो
0: बड़े
1: बहुत
0: बड़े
1: अच्छे,
0: मॉल में।
1: बड़े बड़े मॉल में, बिल्डिंग में इसका काफ़ी अच्छा मतलब लोग लगा रहे हैं, बिल्डर फैसिलिटी दे रहे हैं। और पोर्टेबल जो है वो आपके एक छोटी छोटी गाड़ियों में, जो 4 व्हीलर है उसमें भी आप पोर्टेबल देखते हैं, एक छोटा सा 2 किलो का, 1 किलो का जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो रहता है पोर्टेबल, जिसको आप कहीं भी लेकर आ जा सकते
0: जी
1: हैं।
0: अच्छा, ये तो आप जो बता रहे हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। जब बिजली लगता है, बिजली से जब करंट उत्पन्न हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे, और जब किचन में अगर आग लग जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इस तरह से आग के अगर प्रकार की हम बातचीत करें और उसको बुझाने के तरीके की अगर हम बातचीत करें, तो वो आप बताएं कि हम किस तरह के अग्निशामक यंत्र को हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसको कैसे चयन कैसे करेंगे,
1: जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का
0: उसको कुछ
1: अगर
0: पहचान या कुछ
1: प्रकार
0: कलर
1: का बात
0: वगैरह होता
1: करें।
0: होगा? जी
1: जी, क्योंकि पहले हम ये बात करें फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का होता है। ये 5 तरह का होता है, एक वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ये फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और लिक्विड पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो स्पेशली किचन के लिए यूज होता है।
0: अच्छा
1: और अब हमें नहीं मालूम है कि ये कौन से क्लास के फायर का एजेंट है, तो इसके लिए हमें कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें तो
0: जी
1: आराम से हम अपने आग पे काबू पाने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर का, अग्निशामक यंत्र का चयन कर
0: तो
1: सकते हैं।
0: उसका कोड क्या है?
1: तो क्लास ए फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर मशीन में जो कलर कोड रहेगा वो रेड रहेगा। दूसरा क्लास बी
0: पहला
1: फायर,
0: जो पानी के
1: जो
0: लिए,
1: पानी,
0: पानी से
1: लकड़ी, रबर,
0: बुझाए।
1: प्लास्टिक के लिए जो रहता था। दूसरा जो है आपका ऑयल एंड गैसोलीन जो है क्लास बी फायर, उसके लिए क्रीम कलर का कोड रहेगा, उसमें कलर कोड उसका क्रीम रहेगा, जिसको हम लोग फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तीसरा जो हमने बात किया वो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, जिसका कलर कोड ब्लू है, जो कि किसी भी क्लास के फायर पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैक्सिमम ऑफिसेज वगैरह में और शॉपिंग मॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कलर कोड ब्लैक रहता है, जो ये भी तीनों तरह के, चारों तरह का जितने भी क्लास ऑफ फायर है सभी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा रहा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका, अभी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अग्निशामक यंत्र अवेलेबल, पुराना जो लेटेस्ट पुराना जो टेक्नोलॉजी था उसमें ऊपर से वल्व खोलने के जैसा रहता है, वल्व को खोल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नोजल से प्रेशर आता है, तो उसमें बहुत दिन से अगर रख रखाव में ध्यान नहीं देते हैं तो उसको खोलने में काफी परेशानी आती है।
2: शरण भाइयों, बातचीत आपने सुना कि किस तरह से अग्निशामक यंत्रों से जानमाल की सुरक्षा की जा सकती है। बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लाभ लेने के लिए उसकी पात्रता पर। तो शरण भाइयों, आवेदक को उसकी आवेदन के लिए उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 पारंपरिक व्यवसायों मसलन बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, नाई, दर्जी, राजमिस्त्री वगैरह से जुड़े लोन उसके पात्र हैं, उससे जुड़े लोग उसके पात्र हैं, और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। शरण भाइयों, आवेदन के लिए, खासकर इस योजना के आवेदन के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। शरण भाइयों, ये और इस तरह की मजीद जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक में। आज अब बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मेहनतकश। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय शाम के 6:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 हो चुके हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म दिल का रिश्ता से। माफ कीजिएगा, फिल्म दिल तुम्हारा है। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू व उदित नारायण की।

0: अलका याग्निक और विनोद राठौर का आपने सुना फिल्म जीत में। प्रोग्राम के अगला गीत सुनवाने से पहले हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, कसूर फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:55 होने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, लेकिन पहले ये संदेश।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन, कदे फटे पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ।

0: नया लॉटरी लेगा?
1: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 9 करोड़ लाभार्थियों तक पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के जरिए श्री अन्न और स्थानीय खान पान को बढ़ावा देकर महिलाओं और बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: महिला बाल विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। 14 लाख केंद्रों में लगभग 9 करोड़ के आसपास हमारे लाभार्थी हैं, जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं। बच्चे को जब वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो उनको पोषण के साथ साथ उनको स्कूल के लिए रेडी करना, ये मुख्य लक्ष्य है।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि विकास का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक अवसर, सुविधा और सम्मान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव और पंचायत को सशक्त बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर मंत्री ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण समान रूप तक पहुंचाना है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
3: ये एक बड़ा सवाल है कि जो आस्था के तौर पे मंदिरों में दान देते हैं, ब्लाइंड तौर पे बिना बताए हुए डाल है, उन सारे चीजों का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तिरुपति इतना बड़ा मंदिर है, कभी आज तक ये बात नहीं आया हुआ।
1: प्रदेश भाजपा ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सूची से हटाकर करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दस्तावेजों के आधार पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। श्री शाह आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
4: झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण रखता जाऊंगा।
1: झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि वे प्रतिदिन लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करते रहें और जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यों के प्रति जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। एक रिपोर्ट।
5: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित वेदिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्र को वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उपविकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया। खिलाड़ियों ने राज्य में समानांतर संगठन बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे चयन प्रक्रिया, मान्यता और खिलाड़ियों के भविष्य पर असर पड़ेगा। थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदांत कौस्तभ ने कहा कि खिलाड़ियों को विवाद

0: बात नहीं बल्कि बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और रोजगार के अवसर चाहिए।
1: जब से थ्रोबॉल झारखंड में आया है तब से लगातार यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी बीच कई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, सेकंड साउथ एशियन चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए और भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय। कुछ दिन पहले एक नए संघ का घोषणा किया गया है, अनुचित है यहाँ के खेल के लिए। तो हमें लगता है कि खेल को और इस खिलाड़ियों को बांटने का एक प्रयास है।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इस मौके पर जेकेए इंडिया के तकनीकी निदेशक सिहान आनंद रत्ना ने खिलाड़ियों को कराटे की उन्नत तकनीकों और आत्मरक्षा के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है जिले में आज।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: झारखंड राज्य में एसआईआर 2026 कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही गढ़वा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय पूरी तरह से गंभीर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी।
2: एसआईआर विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया, जो बीएलओ घर घर जाके गणना का काम शुरू करेंगे। इसमें बीएलए 2 जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे सहयोग मांगा गया है और हर स्तर पे उनको भी निर्देशित किया गया है कि बीएलओ को सपोर्ट करें ताकि कोई भी मतदाता जो योग्य है मतदाता सूची में एनरोलमेंट से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता जो इस पात्र मतदाता सूची में रहने के लिए पात्रता नहीं रखता है वो इसमें किसी भी कीमत पे जुड़े नहीं। और बीएलए 2 का भी दायित्व है कि अपने वोटर्स को समझाएं कि यथासंभव मदद करें और जल्दी से फॉर्म भर के उनको दिलवाएं।
1: केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित हो रही उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों के विरोध के कारण इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। विशेषकर डूब क्षेत्र में आने वाले शहीद नीलांबर पीताम्बर के गांव चेमू सनिया के विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों ने मंडल डैम के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंडल डैम का विरोध कर रहे आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष

0: प्रेम शाही मुंडा ने कहा,
1: देश की स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पिता का हमारे योगदान है, बिरसा मुंडा हमारा योगदान है, सिद्धू कानू का है। तो अब आप जो है भूमि अधिग्रहण कानून जो है 13 का वायलेशन करके आप जमीन को जो है कब्जा करना चाहते हैं, तो उसकी इतिहास की भूमि समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी मांग को समर्थन करने के लिए आए हैं। वो कहना चाहते हैं यहाँ की हेमंत सरकार तानाशाही काम कर रही है, रिप्स 2 में भी जबरन काम करने का काम कर रही है, और यहाँ पर फुटकू जलाशय ला करके आदिवासी विस्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास की भूमि रहेगा तो हम आदिवासी कहाँ रहे। इसे मांग करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत जैसा काम न करे, आदिवासियों को बचाने का काम करे।
0: जिला मुख्यालय गढ़वा में पिछले दिन मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाली नेहा कुमारी नामक महिला ने एक अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
2: खुशी हो रही है, पिछला बार मेरा ब्लड दान हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि एक महिला होकर मैं ब्लड दान की हूँ। और हम सभी महिला से बोलती हूँ कि आप लोग भी बहुत गर्व के साथ रक्तदान करें, क्योंकि गरीब को बहुत मतलब सहयोग होता है। और सभी महिला को बोलेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि हम लोग के महिला को मतलब कमजोर समझा जाता है, लेकिन हम लोग किसी से कमजोर नहीं है।
0: जिले में काफी प्रतीक्षा के बाद जुलाई महीने में मानसून ने दस्तक देकर खेती से निराश हो रहे किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। जिले में 5 जुलाई के बाद से रह रहकर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होते ही जिले में चारों ओर भदई फसल और धान के बिचड़े की बुआई शुरू हो चुकी है। मानसून के आगमन के साथ ही किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
3: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज का।

0: हमारी
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में समय शाम के 7:16 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और साधे की आवाज में फिल्म मिस्टर इंडिया का यदि।

झिनकार अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घर में इस समय शाम के 7:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर शाम के 7:30 हो रहे हैं। पेशे खदमत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल-टाइम हिट्स। लिए प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ।

कुमार गोस्वामी को आपने सुना फिल्म आशोक में। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स एफएम हजारीबाग से। ये रही प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

लता मंगेशकर और अनवर को सुना आपने फिल्म हीर रांझा में। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स एफएम हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पुलिस पब्लिक का ये गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

ऑल टाइम हिट्स। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अब आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8 बज चुके हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जवाब हम देंगे फिल्म का। आवाजें हैं शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

साधना सरगम और कुमार सानू को आपने सुना फिल्म दामिन में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत एफ एम हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। प्रोग्राम के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत फिल्म हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जीने नहीं दूंगा फिल्म का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

आशा भोसले और शब्बीर कुमार को अपने सुना फिल्म कुली में। ये लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जानी दुश्मन फिल्म का। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म जानी दुश्मन में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म बेताब का ये गीत।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घर में समय रात के 8:45 होने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09, उसके बाद आप सुनेंगे स्पॉटलाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे

0: चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और

शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

बिमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। ये फिल्म थी यह

बिमल दास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमल दास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

वक्त की इस बेरहम मार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेरिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

बिमलदा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमलदा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमलदा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमलदा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमलदा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

0: अब दिन
1: न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदेर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदेर पौथे

कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रही। फिल्में थी अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की माँ। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रूपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डीसिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से। एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: तक तक तक तक तगन तगन गिन गिन रे। जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
2: जग जग गुर जग जगी गुर जग जग गुर जग जगी गुर जग जग गुर जग

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया विराज बहु का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

विमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने विमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

0: विमल दा ने 1960 में बनाई फिल्म परख, जो लीक से हटकर फिल्म थी और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया।
1: सजन

0: बंदिनी विमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।
1: मोरा

बिमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन बिमलदा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदा, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चम्बेदी कली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदय पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। बिमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। बिमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन ये फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को बिमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। बिमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घर में इस वक्त रात के ठीक 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

सुना का आकाशवाणी के हजार बाग केंद्र से बोल रहे हैं। फिर भी 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 10:51 हो चुके हैं। पेश खिदमत है आप ही की खतों पर मबनी फरमाइशी फिल्मों गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत प्रोग्राम सुनाने वालों को अली शब्बीर का नमस्कार। आइए आगाज करते हैं प्रोग्राम का फिल्म हमराज के इस गीत से जिसमें अपनी आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है मालीटोला खेर गांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित, ऋषि और राहुल, यहीं से आप हैं। कल्लू मालाकार, आशा देवी, अरविंद मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार और अमन मालाकार। ये खत आया है बनासो दरियापुर महाराष्ट्र से। आप हैं राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर चौहान और सचिन चौहान। आप हैं जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी और नूतन कुमारी, साथ में कुसुम और आर्यन। आप सबने महेंद्र कपूर को फिल्म हमराज में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

शोर अगला नगमा हमने लिया इसी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, सुनने की ख्वाहिश मत है आप सब। गुलपर रामगढ़ से शहनवाज हुसैन, अकबर हुसैन, अशरफ हुसैन, अनवर हुसैन, तलत यास्मीन, रिफत यास्मीन, फरहत यास्मीन और बिस्मिल्ला खान। आप हैं हजारीबाग पतरातों से बेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मितु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और समस्त सोरेन परिवार। मैसूर सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, अरहान, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजा नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। कुकीलवाड़ा उराई जिला मुजफ्फरपुर से आप हैं मोहम्मद फैसल शेख, नुजर जहां नाज और अमजद शेख। आप सब ने शोर फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब उठाइए अपने पसंद की इस नगमे का लुत्फ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं। आप ही के खातों पर अपनी फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। प्रोग्राम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से, आवाज है किशोर कुमार की, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

सब शिवाजी चौक से, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। यहीं से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, मुंशीलाल, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और निशा। और ये खत आया है दिल्ली शहर मूरी गेट से, आप हैं कन्हैया लाल, सीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। गोविंदपुर धनबाद से आप हैं शराफत हुसैन, बेगम रिहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम। और भुरकुंडा से आप हैं रानी, दिया, प्रकाश, शोमित, रूपा, संध्या, मृदुला और ढेर सारे दोस्त। आप सबने ब्लैकमेल में फिल्म ब्लैकमेल में किशोर कुमार को सुनने की ख्वाहिश की है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

अगला नगमा हमने लिया है फिल्म जहबाज से, आवाज है मनहर उदास और साधना सरगम की। सुनने के लिए खत लिखा है चंदा चौक अंदराढ़ी जिला मधुबनी बिहार से शोभी कांत, हेमलता, मनोज, लकी, मोहित, परी, सरोज, सुती, नैतिक और सोनाक्षी। आप हैं नेटवाला भीकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान सुधा।

सौदागर मोहल्ला रामगढ़ साफिर महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महफूज आलम, शहनाज नूरी, शमशाद बेगम। और आप हैं भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा और दीपक वर्मा। आप सबने सलमा आगा को फिल्म निकाह में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत और दीजिए कार्यक्रम से अली शब्बीर को इजाजत। नमस्कार।

आपकी चाहत। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो के घड़ी में इस समय रात के 10:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुनेंगे प्रोग्राम शामी गजल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 10:31 और 12 सेकंड हो रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम शाम गजल। आज के इस प्रोग्राम के तहत हम आपको सुना रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। लीजिए प्रोग्राम की पहली पेशकश है गुलाम अली की आवाज़ में कैसरुल जाफरी का ये कलाम।

शाम गजल अभी आप सुन रहे थे हमारा ये प्रोग्राम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है।

0: सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।